मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि तदनुसार शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 49 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और सबसे पहले लीजिए सुनिए ये देशगान समूह स्वर में।

समूह स्वर में अभी आपने सुना ये देश गान, और अब लीजिए सुनिए माँ मेहरावाली की ये भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

गोपाल शर्मा, सुखदेव, कौशलेंद्र और राघवेंद्र की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए ये भजन। रचना है पंडित रामानंद शर्मा की।

हरिहरन की आवाज में अभी आपने सुना ये भोले भंडारी का भजन। और अब लीजिए सुनिए ये हरि भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये हरिभजन, और इसी के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय है अल्हड़पन, संकलन और वाचन स्वर है कल्पना सिन्हा का।
1: अल्हड़पन जीवन का वह सुंदर गुण है जिसमें उत्साह, निश्चलता, सरलता और स्वाभाविक आनंद का समावेश होता है। यह केवल युवावस्था की पहचान नहीं है, बल्कि मन की वह अवस्था है जो व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक बनाए रखती है। अल्हड़पन का अर्थ लापरवाही नहीं होता, बल्कि जीवन को सहजता और उमंग के साथ जीने की कला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे समय में अल्हड़पन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, बल्कि खुशियों और अनुभवों की एक सुंदर यात्रा भी है। जो व्यक्ति अपने भीतर की सहजता और उत्साह को जीवित रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की शक्ति रखता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा गया, आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उम्र से बूढ़ा हूँ, लेकिन मन से आज भी बच्चा हूँ। मैं हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता हूँ और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता हूँ। यही अल्हड़पन है, परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन का आनंद लेना। अल्हड़पन व्यक्ति को रचनात्मक बनाता है। बच्चे इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनमें जिज्ञासा और उत्साह भरपूर होता है। वे असफलता से नहीं डरते, गिरते हैं फिर उठते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं। यदि बड़े होने पर भी हम इस गुण को बनाए रखें तो जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। हालांकि यहाँ पर अल्हड़पन और लापरवाही में अंतर समझना आवश्यक है। जिम्मेदारियों से भागना अल्हड़पन नहीं है। सच्चा अल्हड़पन वह है जिसमें व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन की प्रसन्नता को बनाए रखे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता नहीं खोता, वैसे ही जीवन की चुनौतियों के बीच भी मन की सहजता बनाए रखना ही वास्तविक अल्हड़पन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस विचार में उत्साह और ऊर्जा का संदेश छिपा है। अल्हड़पन तभी सार्थक है जब वह हमें सकारात्मक कर्मों की ओर प्रेरित करे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। युवाओं का अल्हड़पन यदि सपनों और मेहनत से जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। एक प्रेरक उदाहरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का है। हजारों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। जब उनसे असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह दृष्टिकोण जीवन के प्रति उत्साह और सकारात्मक अल्हड़पन का उत्कृष्ट

0: अच्छा उदाहरण है। कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में उत्साह और उमंग है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। अल्हड़पन हमें यही शक्ति देता है कि हम परिस्थितियों के आगे हार ना माने। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखें, हंसना सीखें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, प्रकृति से जुड़ें, नए अनुभव प्राप्त करें और जीवन को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझें। जब मन में उत्साह होगा तब कार्य में ऊर्जा होगी और जीवन में सफलता भी। अल्हड़पन जीवन की वह मधुर धारा है जो मन को तरोताजा रखती है। अल्हड़पन हमें सिखाता है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी मुस्कुराया जा सकता है और जीवन को पूरे उत्साह के साथ जिया जा सकता है। इसलिए अपने भीतर की सहजता, जिज्ञासा और उमंग को कभी भी समाप्त न होने दें। यही गुण जीवन को सुंदर, सार्थक और प्रेरणादायक बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय था अल्हड़पन। संकलन और वाचन स्वर था कल्पना सिन्हा का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 99 99

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय है आलू की खेती से लाभ।
1: भारतवर्ष में आलू की फसल वर्ष भर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू का लगभग सभी परिवार किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसका सभी व्यंजनों में उपयोग होने के कारण इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू एक महत्वपूर्ण आहार तथा कम समय में पैदा होने वाली एक फसल है तथा इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होने के कारण इन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या के समाधान का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही अन्य पोषक तत्व भी इसमें उपलब्ध होते हैं। आलू की फसल में खरपतवार, कीट एवं रोग से 42% हानि होती है। आलू की फसल में विभिन्न कीट एवं व्याधियों के से उत्पादन व गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और इस कारण बाजार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में आलू के उत्पादन में पिछले 60 वर्षों में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1940 में जब क्षेत्र में उगाया गया जिसमें 1.54 मिलियन टन उत्पादन शुरुआत में हुआ, वर्ष 2013-14 से लेकर आज तक लगातार इसका क्षेत्रफल, इसका रकबा बढ़ता जा रहा है। हम देखेंगे आलू का क्षेत्रफल लगभग आज 10 गुना में वृद्धि हो चुकी है। यदि प्रति व्यक्ति उपयोग को देखा जाए तो यूरोप तथा कई अन्य देशों में आलू का उपयोग 100 से 120 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष है, जबकि भारत में यह लगभग 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष है। आलू की खेती के लिए जीवाणुयुक्त बलुई एवं हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है। अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। आलू की फसल हेतु अधिक अम्लीय एवं क्षारीय तथा जल भराव वाली भूमि कदापि न चुने। गर्मियों में मई से जुलाई तक खेत की जुताई करने से मिट्टी जनित बीमारियों तथा खरपतवार को कम किया जा सकता है। आलू की बुआई से पूर्व हरी खाद वाली ढेंचा मूंग उड़द खेत में लगाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की 2% कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और आलू को पैदावार 3 टन तक बढ़ जाती है। आलू की फसल के लिए मिट्टी को अधिक खुली और भुरभुरी बनाए रखने के लिए बुआई से 6 से 8 सप्ताह पूर्व मिट्टी पलटने वाले भारी हल तथा हैरो से 2 बार अथवा कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेतों को समतल कर उचित नमी बनाए रखने हेतु पलेवा करने करके पुनः कल्टीवेटर से 2 जुताई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से 10 दिन पहले ग्लाइफोसेट 42% प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से खरपतवार में कमी आती है। फसल बुआई के 15 से 20 दिन पूर्व अच्छी सड़ी गोबर की खाद तथा कंपोस्ट 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन की उचित मात्रा आलू की फसल के लिए 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के लिए 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। फास्फोरस की संतुलित मात्रा में पौधों में कंदों की संख्या बढ़ाने के अलावा अंदर की बनावट में विशेष योगदान प्रदान करती है। आलू की अच्छी उपज के लिए जरूर दोमट तथा काली मिट्टी में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा अनुकूल समझी गई है, जिसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आलू के अच्छे उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी 100 से 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देना लाभदायक होगा। पोटास की आपूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट आलू के लिए उर्वरक के अच्छे स्रोत माने गए हैं। बीज सदैव रोग रहित, स्वस्थ, शुद्ध प्रजाति

0: का प्रयोग करें, मध्यम आकार वजन ग्राम में जिसका भार 35 से 40 ग्राम हो, बिना कांटे प्रयोग करें जिसमें एक स्थान पर कई पौधे होते हैं और उत्पादन में इजाफा होता है, क्योंकि बीज का पैदावार खर्च में 30 से 40 भाग ही हिस्सेदारी होती है। बुआई से कम 10 दिन पूर्व शीत भंडार से आलू के बीज को निकाल लें। बीज की बोरियों को कम से कम 24 घंटे तक अभितन कक्ष में रखें। बीज अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बीज को फफूंद एवं बैक्टीरिया जनित छुआछूत रोगों से सुरक्षा के लिए एग्लाल 3% के 250 ग्राम के 250 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को शोधित किया जाना चाहिए। आलू के ब्लैक स्कार्फ रोग से बचाव के लिए कंद या कंदों के टुकड़ों को बुआई के पूर्व 0.5% एरिटान टेफासॉन 6% पारा युक्त घोल में 2 मिनट दुबाने के उपरांत बुआई के करने से सुरक्षा हो जाती है। बुआई का सर्वोत्तम समय अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 18 से 20 के मध्य होता है और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आलू की अगेती फसल सितंबर एवं अगस्त में दी जाती है। मुख्य फसल अक्टूबर नवंबर तथा देर से या बीज बोने वाली फसल दिसंबर एवं जनवरी में बोई जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय था आलू की खेती से लाभ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। आज सुबह 7 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा इंद्रमणिदास और साथी, बनगैहा रामगोड़ और साथी, शोभाबाई और साथियों के स्वर में सरगुजीहा लोक गीत। सुबह 7:15 पर चंद गज़लों के कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा चंद गज़लें। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। सुबह 9 बजे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे। सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10 बजे हम आपको बताएंगे तापमान की सूचना। उसके बाद कार्यक्रम विवरण फिर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण समय होगा। दिन में 12 बजे सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर गोसाइन में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इसके अलावा आप सुनिएगा क्रम कथा कहनी। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधूली में हम आपको सुनाएंगे कलेश्वरी बाई और साथी राजन राम और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में सुनिएगा चंद गज।

प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः

0: उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए शोभा बाई और साथियों के स्वर में देवी भजन।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब लीजिए सुनिए इंद्र मणिदास और साथियों के स्वर में अंगनाई गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल के अंत में लीजिए सुनिए, बन गई हैं राम गोड़ और साथियों के स्वर में महादेव गीत।

अभी आपने सुना बन गई है राम गोड़ और साथियों के स्वर में महादेव गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। सुबह की 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में इब्राहिम अस्क की लिखी ये गज़ल।

दिल की बातों को लफ्जों में ढाल दिया, जो कहना था तुमसे खामोशी में कह दिया। तुम समझो तो कहानी बन जाए, न समझो तो बस एक एहसास रह जाए।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज में गुलजार की लिखी ये गजल। वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, कुछ अपने भी दूर निकल जाते हैं, जो साथ निभाते हैं हर हाल में वही रिश्ते दिल में बस जाते हैं।

0: इसी गज़ल के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के अंक में आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का, और फिल्म का नाम है झुक गया आसमां।

श्रोताओं, एमसीबी जिला से प्राप्त सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। बिरहोर बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, नवोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा पहली और छठवीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा के साथ आवास, भोजन, पुस्तकें और चिकित्सा सुविधा पूरी तरह निःशुल्क। विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

विकासखंड भरतपुर के नौढ़िया स्थित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विद्यालय में कक्षा पहली और छठवीं में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक और पात्र विद्यार्थियों के पालक 30 जून 2026 तक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर या कार्यालय मंडल संयोजक विकासखंड भरतपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं और जिले की वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ पौष्टिक भोजन, नाश्ता, गणवेश, टी शर्ट, जूते, मोजे, स्वेटर, टाई, बेल्ट, पाठ्यपुस्तकें, कापियां, खेल सामग्री, चिकित्सा सुविधा और पुस्तकालय जैसी अनेक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास का अवसर मिलता है। आदिवासी विकास विभाग ने बिरहोर समुदाय के पात्र बच्चों के अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपील की है। 19 जून को जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में लगेगा रोजगार मेला। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 जून यानी आज रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होगा। रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। इसमें परिश्रम ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीटर इंस्टॉलेशन पद के लिए 100 रिक्तियां, LIC अंबिकापुर द्वारा इंश्योरेंस एडवाइजर पद के लिए 50 रिक्तियां, लाइफ मिलेनियम प्री स्कूल मनेन्द्रगढ़ द्वारा टीचर पद के लिए 3 रिक्तियां और आलेख पब्लिक स्कूल सिरौली द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए 1 पद रिक्त उपलब्ध है। प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट या CG रोजगार पंजीयन ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होना होगा। और इस सूचना के बाद अब अगला गीत सुनते चलें। ये गीत हमने लिया है फिल्म बाबी से। स्वर दिया है शैलेंद्र सिंह और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित 25 जून 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण का अवसर। जिले के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खड़गवां द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित डिजिटल मित्र कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्था के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 25 जून 2026 तक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर स्वयं उपस्थित होकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खड़गवां में जमा कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल सेवाओं और आधुनिक तकनीकी कार्यों में दक्ष बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और अब हम आपको बता दें जनसंपर्क विभाग सरगुजा से प्राप्त सूचनाएं। कलेक्टर एवं एसपी ने हेलीपैड और कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। तैयारी समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय विद्यालय में बनाए जा रहे हेलीपैड स्थल और राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अजीरमा के ऑडिटोरियम हॉल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की जानी है। इस अवसर पर राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अजीरमा के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। कलेक्टर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शिक्षित बेटी ही आत्मनिर्भर समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झिरमिटी में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन। नव प्रवेशी छात्राओं का हुआ आत्मीय स्वागत। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा एक ऐसे सशक्त समाज की नींव रखती है जहां समान अवसर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी भावना के साथ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झिरमिटी उदयपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर नव प्रवेशी छात्राओं का आत्मीय स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों, पालकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री अंबिकापुर में होंगे शामिल। अधिकारियों को सौंपे गए विभिन्न दायित्व। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला सरगुजा में मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का 21 जून 2026 के कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री अंबिकापुर के राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में शामिल होंगे। इस कार्य के सफल और सुचारू संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को जिला नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभाग के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पार्किंग वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट, कानून ब्लड ग्रुप व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा हेलीपैड एवं संपूर्ण कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था हेतु बांस बल्ली व्यवस्था कराना वन मंडलाधिकारी अंबिकापुर। कार्यक्रम के दो दिवस पूर्व हेलीपैड के अक्षांश देशांश की जानकारी एवं दंडाधिकारी की ड्यूटी लगाना अपर कलेक्टर और कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग।

जिला सरगुजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन शक्ति अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अंतिम वरीयता और चयन प्रतीक्षा सूची जारी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन और सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए पैरालीगल कार्मिक वकील के एक पद, पैरामेडिकल कार्मिक के एक पद, बहुउद्देशीय कर्मचारी रसोईया के एक पद और सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड के तीन पदों के कुल 6 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापित पदों का 2 जून 2026 को आयोजित साक्षात्कार पश्चात चयन समिति के अनुमोदन से अंतिम वरीयता सूची व चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। वरीयता सूची, चयन सूची, प्रतीक्षा सूची सरगुजा जिले के वेबसाइट और कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। और इस सूचना के बाद अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत तलत महमूद की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है पतिता।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: नमस्कार सरगुजा,
3: सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
7: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
5: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से

0: भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
1: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए

0: सर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption.

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम मनोरंजन के माध्यमों की बात करते हैं तो फिल्में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो माध्यम है जिसने वर्षों से भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। हिंदी सिनेमा से लेकर प्रांतीय सिनेमा तक अनेक फिल्में बनी हैं। श्वेत श्याम से लेकर रंगीन फिल्मों के इस दौर में हमारे फिल्म उद्योग से जुड़े अनेक कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने फिल्म के लेखन, निर्देशन और निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और जब हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करते हैं तो सन 60 के दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में भी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का। और उस दौर में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी कही देवे संदेश। और आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक जी को। नायक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद इनवाइट करने के लिए।
0: नायक जी, आपके नाम को लेते ही समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म कही देवे संदेश की याद आती है।
1: जी,
0: आप चूंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं तो सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही।
1: रायपुर जिले का एक ग्राम है कुर्रा बंगोली, यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मेरे उसी गांव से मिली, उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर से हाई स्कूल का एजुकेशन।
0: उसके बाद आप ये फिल्म वाले क्षेत्र में कैसे आए, आपके मन में कौन सी बात आई?
1: मैं हमेशा देखता था कि हमारे गांव के लड़के जो हमारे साथ पढ़ रहे थे उनके गार्जियन मिलने आते थे गाँव से, किसान, तो उनके साथ वार्तालाप करते थे। तो गांव वाला तो छत्तीसगढ़ी में बात करता था लेकिन उनका लड़का जो है हिंदी में बात करता था, तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता था कि अपनी मातृभाषा का की उपेक्षा करना। इसी तरह से छुआछूत के बारे में मेरा दोस्त था एक श्याम रतन करके, वो घर में आता है मेरे मिलने मेरे से और मेरे साथ बैठता था बाहर आंगन में, तो वो जब जाता था तो वहाँ मेरी माँ लिपवा देती थी गोबर से। तो इतने हेट्रेट था एक छुआछूत के बारे में जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल नामी राष्ट्रीय विद्यालय था, वहाँ सब देश के एक से एक नेता, बड़े बड़े नेता आके वहाँ भाषण देते थे, सब समानता की बात करते थे लेकिन हकीकत में वस्तु स्थिति अलग थी। ये सब चीज़ें मेरे अंदर में थी, तो शुरू से सोच लिया मैंने कि मैं फिल्म अगर बनाऊँगा, क्योंकि फिल्म में रुझान मेरा ऐसा हुआ, वार्षिक प्रोग्राम जो होता था स्कूल का उसमें रामानंद कनौजे करके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट लिख के दिया।
0: कनौजे जी ने आपको सर्टिफिकेट लिख कर दिया, तो उसके बाद फिर ये जो पहली जो आपकी फिल्म थी कही देवे संदेश, इसकी कल्पना किस तरह से आपने की? और चूंकि इस फिल्म को आपने लिखा भी है तो इसके लेखन के वक्त कहानी कैसे सूझी आपको, क्या सोचा आपने कि किस कहानी पर फिल्म बनाई जाए?
1: मैं स्कूल के एजुकेशन के दिनों में रेलवे स्टेशन के पास नर्मदा कुंड है वहाँ रहता था, जो 2 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच सकते थे, तो रेलवे स्टेशन में व्हीलर का बुक स्टॉल था, वहाँ मुझे फ्री में सब पढ़ने को मिलता था। वहाँ देखा कि सिनेमा के मैगजीन बहुत तेरे बिकते हैं, तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और मेरी भी इच्छा भी जागृत होने लगी कि मैं भी सिनेमा बनाऊँ। और अपने मन में ये बात रखी कि किसी को बोलूँ तो हंसेगा ना।
0: तो आपके मन में सिनेमा बनाने की बात आई, तो इसके लिए कहीं से कुछ सीखा आपने या किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कभी जोड़ने की कोशिश की ये फिल्म बनाने के पहले?
1: एक साहब थे, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है अभी, वो मुंबई आना जाना क्या करते थे, उनका तो काम दूसरा था लेकिन आते जाते थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई रायपुर में रेलवे स्टेशन में, एवरी टाइम आते जाते थे, तो मैं भी उधर

0: स्कूल आवर्स के बाद रेलवे स्टेशन में बिताता था मैं भी, तो उनसे जब दोस्ताना हो गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी मुंबई देखना है, तो उन्होंने बराबर अपना एड्रेस दिया और बोलना आप जब चाहे आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं हूँगा तो बम्बई में ही रहता हूँ। तो MNT स्टूडियो था, उसके अंदर उसका क्वार्टर था, तो वहाँ गए तो देखा कि सिनेमा वाले ही हैं सब। मोहन स्टूडियो सामने था जहाँ हम लोग रुके थे, तो वहाँ देवदास की शूटिंग चल रही थी, तो उसी में देवदास के यूनिट का एक मेंबर मेरे पास आया, तेरे को हिंदी आती है ना अच्छी? तो मैं कहा आती तो है, अब अच्छी है कि नहीं ये नहीं पता है। फिर उन्होंने कहा कि ये डायलॉग जो है ये आर्टिस्ट को रटाना है। मैं कहा ठीक है। तो वो दुलारी बाई थी, उसको रटाना था, लेकिन वो मैं खुद पहले परेशान था कि इस माहौल में मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो सफल नहीं हो पाई, डायलॉग में रिटेक हो गया, तो फिर मुझे दो चार गालियां दी और भगा दिया मुझे। तो इतने में क्या था कि आसिफ साहब का फिल्म मुगल आजम, उसका जो मटेरियल था सेटिंग का, सब एग्जीबिशन के लिए था, वहाँ मैं लगा हुआ था, वहाँ पर मुझे एक महीने के लिए काम मिल गया। तो इस तरह सिनेमा लाइन के अंदर मैं घुस गया, समझ लीजिए।
1: तो इस तरह से आप सिनेमा लाइन में चले गए, और उसके बाद में फिर ये फिल्म कहीं देवे संदेश की कल्पना आपके दिमाग में आई, 1965 में ये फिल्म आपने बनाई थी
0: जी।
1: तो फिर वहाँ से फिर आप वापस रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ आने के बाद फिर इस फिल्म की आपने प्लानिंग की?
0: यहाँ प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग तो मुंबई में ही की।
1: वहीं की आपने?
0: हाँ।
1: अच्छा,
0: यहाँ पर तो लोग फिल्म का नाम बोलो तो आपको जूता मारने के लिए तैयार होते थे लोग।
1: उस समय इस तरह की मानसिकता लोगों में नहीं थी कि फिल्म से जुड़ सके। तो फिर कहीं देवे संदेश के लिए आपने जब स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, इसकी कास्टिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए। कास्टिंग के लिए कलाकार कहाँ मिले आपको?
0: क्योंकि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, महेश कॉल और मुखराम शर्मा के ऑफिस में
1: जी,
0: उस जमाने पर शीर्ष में उनका नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनका चहेता एम्प्लाई था। कॉल साहब से मिलना है तो मेरे से पहले मिल के जाता था, तो कॉल साहब मुलाकात करते थे। वहाँ फिर मुखराम शर्मा जी के कापी राइटर की तरफ भी काम करता था, स्क्रिप्ट लिखते थे वो, उनको फेयर करना, उसको टाइप करवाना, ये सब काम मिल गया मुझे। तो उससे मैं समझने लगा कि स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, और चूँकि शूटिंग में होता था कंपनी की, तो शूटिंग में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन कितने इम्पोर्टेंट है, क्या है वो सब। और उसके बाद एडिटिंग होती थी, तो एडिटिंग में भी जाके देखा करता था कि ये लोग एडिट कैसे करते हैं, क्या है। तो इस तरह से नॉलेज जो है सिर्फ फिल्म मेकिंग का, और सबसे बड़ा उसमें बिजनेस का हाथ होता था। तो NCCP जो है उस समय हमारे जनरल मैनेजर थे, और वो फिल्म लाइन के एक्सपर्ट थे फिल्म मेकिंग में, बिजनेस में। तो उनसे मैंने सीखा बिजनेस कैसा होता है, सिनेमा का कैसे रिलीज करते हैं फिल्म, कैसे सेल होता है, ये सब नॉलेज मेरे अंदर में धीरे धीरे बलवती होती गई। और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं फिल्म बना लूँगा, अब रही गई पैसे की बात। तो मैंने आगे देखा ना पीछे देखा, गाना रिकॉर्ड कर लिया रफ़ी साहब का।
1: अच्छा, कौन सा गाना था वो?
0: झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हाँ ये धरती के, धरती मोर पर आन हवे।
1: ये गाना तो बड़ा सुंदर बन पड़ा था।
0: हाँ हाँ, बहुत पसंद आया था लोगों को।
1: तो श्रोताओं को ये गाना सुना भी दें?
0: हाँ बिल्कुल, सुना दीजिए।
1: बिल्कुल। हाँ। तो आइए सुनते हैं आपकी फिल्म कई देवे संदेश का। हाँ।

0: क्या बात है नायक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हमें सुनवाया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर ये गीत आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद और कौन कौन से गीत रिकॉर्ड करवाया आपने?
1: तो उसके बाद पहली बात तो ये है कि मुझे मेरी कंपनी से नोटिस आ गया कि आप पागलपन कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला के दोगे
0: जी,
1: कहीं से उधार लेके तुम गाना रिकॉर्ड किया होगे ऐसा वैसा। तो बोले कंपनी ने तय किया है कि जितना रिकॉर्डिंग का खर्चा है कंपनी देगी और तुम फिल्म मेकिंग छोड़ के कंपनी का काम करो, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो फिर नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी और भटकने लगा, समझो 58, 59, 60।
0: उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था नायक साहब।
1: हाँ जी हाँ।
0: उसके बाद फिर आप भटकते भटकते कहाँ चले गए ये बताइए?
1: हाँ, भटकते भटकते घूम फिर के वहीं पहुँच जाता था जहाँ शुरू में जिनके वहाँ डेरा डाला था
0: जी।
1: फिर उन्होंने कहा कि कोई नौकरी पकड़ लो, तुम्हारा खर्चा कम से कम चले। फिर मैंने नौकरी वापस पकड़ ली कंपनी में।
0: फिर आप वापस नौकरी में आ गए, फिर ये कही देवे संदेश का क्या हुआ फिर?
1: फिर मैं काम करता रहा।
0: अच्छा,
1: कंपनी को बताए बगैर
0: काम करते रहे?
1: हाँ, गाना लिखवाना, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सीटिंग करना
0: जी,
1: ये ऑफिस आवर्स के बाद मैं करने लगा।
0: तो कही देवे संदेश के गाने तो आपने हनुमंत नायडू जी से लिखवाए थे ना?
1: जी हाँ जी हाँ। हनुमंत नायडू साहब बहुत योग्य
0: जी
1: कवि थे, उनसे भी हमारी जान पहचान कुछ ऐसे ही समय हुआ कि उनको भी कुछ जरूरत थी, लोग उनको साथ दे।
0: और इसके संगीतकार कौन थे?
1: मलय चक्रवर्ती करके थे।
0: मलय चक्रवर्ती जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इनके बारे में हमारे श्रोता जानते नहीं है, कुछ बताइए कहाँ मिले ये आपको, कहाँ के थे?
1: मलय चक्रवर्ती साहब हमारी कंपनी के बाजू में दूसरा ऑफिस था
0: मुंबई में जी,
1: वहाँ उनकी फिल्म कर रहे थे तो उनका रिहर्सल वगैरह गाने का चलता था, तो हम मैं सुनता था, सुनाई देता था बाहर। तो वो लगता था कि कोई बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है जो गीत ये लिख रहा है। तो फिर मैंने उनको बुला लिया एक दिन, मैं छत्तीसगढ़ी में ऐसा बनाना चाहता हूँ अब, लेकिन मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा डिमांड वमांड करोगे तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो आप गाना

0: रिकॉर्ड करवा लो, पैसे की बात छोड़ दो, तो एक तरह से हामी हो गई उधर से।
1: और उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत लिखा है तो वो मूलतः छत्तीसगढ़ के थे ना नायडू जी?
0: दुर्ग के थे।
1: दुर्ग के थे जी।
0: तो वो किसी से मेरा एड्रेस लेके मुंबई आए थे
1: जी,
0: फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन गए मेरे वो
1: जी।
0: उनसे जो भी लिखवाना होता था मैं फ़ोन कर देता था और वो गीत का टेक्स्ट लेके आ जाते थे, फिर मलय चक्रवर्ती के पास पहुँच जाते थे और उनसे तुरंत के तुरंत ट्यून बना देते थे वो, उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेते थे, लेकिन काम तुरंत करते थे।
1: आपकी फिल्म कही देवे संदेश में मोहम्मद रफ़ी जी ने भी गीत गाए थे और उस समय तो मोहम्मद रफ़ी जी बड़े लोकप्रिय गायकों में एक थे।
0: हाँ जी,
1: भारत के नामचीन गायकों में एक थे
0: जी।
1: तो उनको जब आपने इस फिल्म के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन्हें पहली बार गाना है, तो रफ़ी साहब का क्या रिएक्शन था?
0: रफ़ी साहब रिहर्सल किए तो एक दो रिहर्सल के बाद बोलने लगे कि ये गीत आप खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेरे से क्यों करवा रहे हो, छत्तीसगढ़ी में आप गाओ और हो जाएगा। तो मैंने बताया कि फिर रिकॉर्ड कौन खरीदेगा,
1: अच्छा
0: आपका नाम है तो काम आसान हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही कम दाम में गाना रिकॉर्ड किया हमारे साथ।
1: इसमें मोहम्मद रफ़ी जी का एक और हिट गीत था तोर पैरी के झनर झनर।
0: हाँ जी हाँ।
1: उस गाने के बारे में कुछ बताइए, उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जब रफ़ी साहब आए तब उन्होंने किस तरह से लिरिक्स को देखा, समझा, आपसे कुछ समझने की भी कोशिश की होगी कि इन शब्दों का मतलब क्या है, आपने उनको बताया होगा?
0: हाँ, तो उसके बगैर तो होता ही नहीं ना
1: जी, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी तो बड़े सहज सरल इंसान थे।
0: हाँ जी।
1: और पंजाबी उनकी मूल भाषा थी, उसके बावजूद वो अन्य भाषाओं के गीत भी गा लेते थे समझकर पूरी तरह से। तो छत्तीसगढ़ी को किस तरह से आपने समझाया उनको?
0: वो उनका क्या था, आप उनको टेप रिकॉर्डर में टेप करके दे दीजिए, वो घर में बैठ के सुनते थे।
1: अच्छा।
0: ऐसे गीतों को जहाँ उनको जरूरत है, भले एक बार सुन रहे हो घर में या दो बार या रिकॉर्डिंग में आने से पहले सुन रहे हो, लेकिन वो उनका रूटीन था।
1: अच्छा, रफ़ी साहब ने आपसे पूछा होगा ना भाई इसमें हीरो कौन है, किसके ऊपर ये पिक्चराइज किया जाएगा, कुछ पूछा उन्होंने?
0: नहीं नहीं, ये सब ट्रेड में हमारा है नहीं ना, वो लोग अपना अपना काम पे।
1: तो जब ये इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई, रफ़ी साहब से आपने दो गाने रिकॉर्ड करवाए थे ना?
0: हाँ।
1: कही देवे संदेश के लिए।
0: हाँ जी,
1: दो गाने थे। तो इन दोनों गानों की रिकॉर्डिंग के बाद में जब इसके गाने फिल्म में दिखाई देने लगे और उसके बाद इसकी ईपी भी निकली थी कही देवे संदेश की, ईपी भी थी इसकी।
0: हाँ
1: जी। तो ये गाने जब छत्तीसगढ़ में बजने लगे, यहाँ के लोगों ने जब सुना तो किस तरह का रिएक्शन था?
0: गाने के बारे में रिएक्शन तो सब अच्छा था
1: जी,
0: लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि ये छत्तीसगढ़ी गाने नहीं लगते करके।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये गाने सुंदर हैं, ट्यून भी सुंदर है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं लगते, खाली आवाज़ छत्तीसगढ़ी हो नहीं, वो उसका कंटेंट भी छत्तीसगढ़ी लगना चाहिए।
1: और गायिका के तौर पर आपने किनको आमंत्रित किया था?
0: गायिका के तौर पर थी एक मीनू पुरुषोत्तम करके थी
1: जी,
0: जो बाद में अमेरिका चली गई, फिर आए नहीं लौट के वो।
1: उनसे कितने गाने गवाए थे आपने कही देवे?
0: उसने बिहनिया के उगत सूरज देवता एक ये रिकॉर्ड करवाया था, और एक ददरिया था जो मेल सिंगर था महेंद्र कपूर।
1: अच्छा, महेंद्र कपूर जी ने भी गाया था इसमें?
0: हाँ जी।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम
1: जी,
0: तो ददरिया रिकॉर्ड किया था इन दोनों का। उसमें यही था, दो दिन के दुनिया वो दो दिन के रूप, ढली जाही गोरी तोर जवानी की धूप।
1: क्या बात।
0: हाँ, तो इस तरह से था उसमें, लेकिन अभी तो याद नहीं है।
1: तो ये ददरिया सुना जाए?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर ददरिया आपने सुनवाया। और श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक। मनु नायक जी, कही देवे संदेश के गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद इसकी शूटिंग भी पूरी हो गई, और इस तरह से इसकी जो शूटिंग थी उसके लिए आपने लोकेशंस का जो सिलेक्शन किया था वो किस तरह से था?
1: लोकेशन का हमने चयन किया था, वहाँ तो शूटिंग हुई नहीं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जो लोग यहाँ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हम वापस यूनिट लेके यहाँ आए तो कोई हमारे को रिसीव करने वाला नहीं था।
0: और ये जो नायक नायिका और बाकी जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ थीं, इनका सिलेक्शन किस तरह से किया था आपने?
1: वो चूँकि बताया ना कि स्टूडियो में रंजीत स्टूडियो सेंटर प्लेस था उस जमाने में
0: जी,
1: इसमें हरियाणवी छोटी छोटी फिल्में जो है, गंगा मैया तो पेरी चढ़ाई वो, इस तरह की फिल्में, नेपाली फिल्में, सब का उद्गम स्थान था रंजीत स्टूडियो, और वही हमारा ऑफिस था, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग परिचित हो जाते थे। और उसके बाद कौन आर्टिस्ट आया वो मुलाकात भी होती थी उन फिल्मों में जो काम कर रहे थे, तो उसमें कान मोहन था सिंधी का,
0: कान मोहन जी
1: वो हीरो था, अबाना करके सिंधी फिल्म थी उसमें हीरो था
0: जी,
1: साधना हीरोइन थी। उसी तरह से सब आर्टिस्ट को सिनेमा में से देख के सेलेक्ट किया था।
0: नायक साहब, आपकी ये फिल्म जब कंप्लीट हो गई तब इसके रिलीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपने करवाई छत्तीसगढ़ के लिए?
1: हमने बड़ी कोशिश की लेकिन लोगों ने यहाँ कोऑपरेट ही नहीं किया। मुझे तो विलन समझते थे लोग, इन्होंने धर्म को बिगाड़ दिया है, तो ये ऐसे में यहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता था। पिक्चर रिलीज़ किया और थोड़ा बहुत कलेक्शन भी आया, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए वो था नहीं।
0: फिर 1965 में कही देवे संदेश के रिलीज के बाद फिर आपका अगला कदम क्या था?
1: अगला कदम इंतजार करना कि सबको पैसे उधार जो लिए हैं सबको छूटना।
0: अच्छा, तो इसमें कमाई आपको उतनी हुई थी कि नहीं कही देवे
1: संदेश? नहीं नहीं।
0: फिर कैसे, किस तरह से पेमेंट आपने सबका किया?
1: बिजनेस से किया।
0: अच्छा,
1: बिजनेस धीरे धीरे करके किया। गवर्नमेंट ने खरीदा था, 72,000 एक साथ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूरदर्शन में दिखाया था तो, और भोपाल

0: अनंत मराल शास्त्री करके थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने खरीदी थी डिपार्टमेंट के लिए, फ्री में दिखाते हैं ना शो
1: जी,
0: उसके लिए एक पेटी खरीदी थी उन्होंने, कलकत्ता दूरदर्शन ने दिखाया था, उधर से पैसे आया बड़ी रकम, और बाकी बिजनेस से छोटा मोटा।
1: फिर कही देवे संदेश के बाद में आपका अगला सपना क्या था?
0: अगला सपना, मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी पठौनी करके, फिल्म का नाम भी रखा था
1: छत्तीसगढ़ी में जी,
0: लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही अड़चन फिर आने लग गई। लोग आज बात करके जाते थे, दूसरे दिन मुकर जाते थे।
1: नायक साहब, चूंकि शुरू से ही आप हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और हिंदी फिल्मों से जुड़े रहते हुए आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश का निर्माण किया, और उसके बाद फिर हिंदी फिल्मों का आपका जो सफ़र है वो जारी रहा, तो उसके बाद की जो हिंदी फिल्में रही हैं उनमें से कोई एक ऐसी फिल्म आप जिक्र करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आपको याद हो, कोई नाम बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदा दिल।
1: उसमें ऋषि कपूर जी से आपकी जब मुलाकात हुई होगी तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लगे वो आपको?
0: ऋषि कपूर बहुत अच्छा थे, नायक अंकल करके बोला करते थे मुझे।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि उनके पिताजी की फिल्म थी दीवाना
1: जी,
0: दीवाना हमारी कंपनी ने बनाया था तो कौल साहब की, तो उस समय राज कपूर जी से भी मुलाकात शूटिंग में होती थी।
1: हाँ।
0: तो उस हिसाब से दिवाली मिठाई उठाई लेके लेना देना ये सब चलता था, तो उस छोटा था ऋषि कपूर नायक अंकल बोला करता था मुझे।
1: अच्छा अच्छा, ये जिंदा दिल के पहले आपने दीवान कपूर जी की एक फिल्म की थी आज की धारा, आज की धारा के बारे में कुछ याद है आपको?
0: नहीं, याद नहीं आ रहा है।
1: और एक फिल्म थी बिन बाप का बेटा।
0: हाँ, वो बिन बाप का बेटा भी रह गई।
1: अच्छा, ये बाबा साहेब सारंग जी की ये फिल्म थी।
0: हाँ हाँ।
1: ये फिल्म बाद में फ्लोर पे नहीं आई क्या?
0: नहीं आई।
1: अच्छा, एक कस्तूरी फिल्म भी आपने की थी जिसको की नेशनल अवार्ड मिला हुआ था।
0: हाँ।
1: ये बिमल दत्त जी की फिल्म।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: इसके बारे में कुछ याद है आपको?
0: याद है।
1: बताइए, कस्तूरी में कौन थे? कस्तूरी
0: में आगा साहब थे
1: जी,
0: मिथुन चक्रवर्ती।
1: अच्छा, आपने एक सिंधी फिल्म भी की थी।
0: हाँ।
1: सिंधी में वो फिल्म कैसी थी, बताएंगे कुछ उसके बारे में?
0: सिंधी फिल्म बहुत अच्छी थी, मदन जुमानी करके थे।
1: अच्छा।
0: जो डायरेक्टर थे उसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर थे, खुद उन्होंने रोल किया था, और सतराम रोहरा ने बनाई थी
1: जी,
0: जो हमारे अच्छे मित्र थे।
1: और एक जीते हैं शान से।
0: हाँ।
1: इस फिल्म में भी आपने अपना योगदान दिया था, पी सुब्बा राव जी की फिल्म थी जीते हैं शान से।
0: हाँ हाँ।
1: तो नायक साहब, इस तरह से हिंदी फिल्मों का भी आपका एक लंबा सफर रहा है
0: जी।
1: अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में अभी कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरी पत्नी तो रही नहीं, और मेरा दो पुत्र हैं, दोनों कामकाज में लगे हुए हैं, इंजीनियर हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे भाई का परिवार है।
1: तो अभी आप रहते कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में हैं या फिर महाराष्ट्र में?
0: महाराष्ट्र में।
1: मुंबई में रहते हैं?
0: मुंबई में।
1: अच्छा,
0: और आपके लड़के दोनों वहीं रहते हैं ना?
1: आपके साथ में ही हैं।
0: हाँ।
1: जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके फिल्मों के दौर की जो सुनहरी यादें हैं, उन यादों के साथ इस वक्त आपके जीवन का ये जो समय है, उन यादों के संग बीत रहा है। और अभी आपकी उम्र कितनी होगी, हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए बताएंगे आप?
0: 1937 का है।
1: 1937 का आपका जन्म है, तो इस तरह से आप 88 साल के आसपास के हैं।
0: हाँ जी
1: जी जी। तो मनु नायक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें, और अपने फिल्मों के योगदान के उस दौर में जिन फिल्मों का आपने निर्माण किया, निर्देशन किया, लिखा, और जिन फिल्मों के प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर आपने फिल्मों में अपना योगदान दिया, उनकी यादें सदैव आपके मानस पटल पर जिंदा रहें, और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इनसे मिलिए कि इस अंक से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक से दीपक हटवार की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
3: अभी आप सुन

रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। स्वागत है साथियों आप सभी का आज के बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। साथियों, प्रकृति और हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितना स्वयं

सभी का आज के बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। साथियों, प्रकृति और हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव सभ्यता का इतिहास। प्रकृति हमारी पहली गुरु, पहली संरक्षक और जीवन की आधारशिला है। जल, वायु, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ, पशु पक्षी और वनस्पतियाँ, ये सभी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, साथियों, मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में वो अक्सर ये भूल जाता है कि उसका अस्तित्व भी प्रकृति पर ही निर्भर है। सुबह उगता सूरज हमें नई ऊर्जा देता है, पक्षियों का कलरव मन को आनंदित करता है, पेड़ हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं और नदियाँ जीवन का संचार करती है। प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। वो कभी ये नहीं पूछती कि कौन अमीर है और कौन गरीब, उसकी गोद में सभी के लिए समान स्थान है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति और हम इस विषय पर। बातें आगे और करेंगे, आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों और पर्वतों को देवतुल्य समान दिया है। पीपल, बरगद और तुलसी जैसे पौधों की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं साथियों, बल्कि प्रकृति संरक्षण का एक माध्यम भी रही है। हमारे त्योहारों और लोक गीतों में भी प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। प्रकृति केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखती है दोस्तों। हरे भरे पेड़, खिलते फूल और बहती नदियाँ मानसिक शांति प्रदान करती हैं। आज जब तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी लोगों को परेशान कर रही है, तब प्रकृति के बीच बिताया गया थोड़ा सा समय भी नई ताजगी और सुकून देता है। और हम आपको सुना रहे हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है साजन की बाहों में। स्वर दिया है कुमार सानू और आशा भोसले ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ और विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, नदियों का दूषित होना और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग

पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट का सामना कर रही है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और अनेक जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये स्थिति हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथियों, प्रकृति और मनुष्य का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सहयोग और सह अस्तित्व का होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर हम स्वयं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि पेड़ कटेंगे तो वर्षा प्रभावित होगी, नदियाँ प्रदूषित होंगी तो पीने योग्य जल की कमी होगी और यदि हवा दूषित होगी तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हम प्रकृति का विशेष रूप से ख्याल रखें और हम भी आपका ख्याल रखते हुए आपको सुना रहे हैं ये अगला गीत। साधना सरगम कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम है फूल।

इतने में ही

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: साथियों, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, जल का संरक्षण करना होगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और स्वच्छता का ध्यान रखना।

ना होगा। छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति हमें हर दिन एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, संतुलन का। सूर्य समय पर उगता है और अस्त होता है। ऋतुएं अपने क्रम से आती जाती हैं। नदियां निरंतर बहती रहती हैं। यदि प्रकृति का ये संतुलन बिगड़ता है तो जीवन भी असंतुलित हो जाता है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना होगा और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति और हम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है और प्रकृति की रक्षा के बिना मानव सभ्यता का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रकृति का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और दोस्तों यही प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। और इन बातों के बाद अब लीजिए सुनिए ये अगला गीत विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म हलचल का गीत। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ में गीतकार थे इंदिवर और फैज़ अनवर, और संगीत था अनु मलिक का।

0: राम राम हो किशोर भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फटफट फटफट ट्रैक्टर में दे राउर भिड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

श्रोताओं 19 जनवरी माफ़ कीजिएगा। साथियों, भारतीय साहित्य और हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक विशेष दिन है। 2 हम बात करने जा रहे हैं कैफी आजमी के बारे में। 1 के आजमगढ़ ज़िले के मिजवा गांव में उर्दू के महान शायर, गीतकार और प्रगतिशील लेखक कैफी आजमी का जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम अख्तर हुसैन रिजवी था, लेकिन दुनिया उन्हें कैफी आजमी के नाम से जानती है। कैफी आजमी केवल एक शायर नहीं थे, बल्कि वे एक विचार, एक आंदोलन और समाज में बदलाव की आवाज़ थे। उनकी रचनाओं में प्रेम, इंसानियत, देशभक्ति और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष और सपनों को शब्द दिए। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शायरी लिखनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में अपनी पहली गज़ल लिखी थी। आगे चलकर वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े और साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया।

दोस्तों, बातें आगे और करेंगे। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं फिल्म जुनून का गीत, अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ में। शब्द रचना है समीर की और धुन तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

साथियों, जब किसी घर में कोई बच्चा पहली बार विद्यालय की दहलीज पर कदम रखता है तो वो केवल अपने जीवन का नया अध्याय शुरू नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को नई उड़ान देता है। बच्चे की मुस्कान, उसकी जिज्ञासा और सीखने की उत्सुकता भविष्य के उज्ज्वल नींव बनती है। इसी भावना को उत्सव का रूप देने के लिए विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, शाला प्रवेश उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के महत्व को समाज तक पहुंचाने का एक जन आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। ये उत्सव नए विद्यार्थियों का स्वागत करता है, अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाता है और विद्यालय में और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। तो इन साल जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका हमें स्कूलों में दाखिला कराने में सहयोग करना होगा।

होगा। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है कोयला।

0: साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब हम प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अब समाचार विस्तार से। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी महाविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं और परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे। छात्र छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मंत्री ने विद्यार्थियों से समय पर प्रवेश लेने और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई शुरू करने की अपील की है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इसे युवा शक्ति की सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 किए जाने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस हॉस्टल में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी आयुक्त ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के 3 अलग अलग मामलों में आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के आबकारी उपनिरीक्षक हरीश पटेल, भानुप्रतापपुर के ओम प्रकाश और अंबिकापुर के आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको बता दें मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वर्षा 27.1 मिलीमीटर मापी गई। मौसम की सूचना के बाद अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुनिएगा। दिन में 12:00 सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर गोसाइन में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इसके अलावा आप सुनिएगा क्रम कथा कहनी। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण।

दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर गोसाइन में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इसके अलावा आप सुनिएगा क्रम कथा कहनी। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधुली में हम आपको सुनाएंगे कलेश्वरी बाई और साथी राजन राम और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी में सुनिएगा चंद फिल्मी गीत। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में सुनिएगा चंद गज़लें। और रात 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में कुछ फिल्म संगीत आप सुनेंगे। शाम 7:20 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज सुनिएगा स्किल इंडिया मिशन प्राकृतिक आपदाएं क्या बदल रहा है पर्यावरण संतुलन, इन विषयों पर सामयिक चर्चा क्रम आजकल और आप सुनेंगे कुछ लोक गीत। रात 8 सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात 10 आप सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। रात 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हांटेड से हमने लिया है। स्वर दिया है जोजो और नजम शेराज ने। गीतकार हैं जुनेद वसी और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म सूर्यवंशी 2 का गीत। गीतकार थे रश्मि विरग और संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और आकाश।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

A.R. रहमान की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हाईवे का गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे A.R. रहमान। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़ में फिल्म मूसा का गीत। गीत के बोल लिखे हैं सहानी असलम ने और संगीत है संतोष शर्मा का।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अभेंद्र कुमार उपाध्याय का लिखा गीत अब लीजिए सुनिए अंकित तिवारी की आवाज में। फिल्म का नाम है रोए।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म एक्शन रिप्ले का गीत अब लीजिए, सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: अभी आपने सुना हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की आवाज़ में फिल्म दिल दिया है का गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

अब लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म एक पहेली लीला का ये गीत। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं टोनी कक्कर।

मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म एक पहेली लीला का ये गीत। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीतकार थे टोनी कक्कर। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। हम आपको बता दें, सुबह 11:05 पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुनेंगे।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी

0: We have can Nice, Evian, Paris. من ایسه صدر دور کلیه سواگت کرده. فرانس و بارک کی دوستی امرائی.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है।

हुए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आप सभी के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव।

0: कार्यक्रम चिट्ठीपत्री लाइव के आज के अंक के साथ आप सभी का स्वागत है। आज पत्रों का सिलसिला लेकर हम हर बार की तरह फिर से हाजिर हैं आपके विचारों से रूबरू होने। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं पौलुमी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमेंद्र कुमार। नमस्कार प्रमेंद्र जी।
1: नमस्कार पौलुमी, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और देखिए, बहुत ही सुहाना मौसम है, सब तरफ बारिश हो रही है हल्की फुल्की, और मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और इसी मौसम के बीच में ढेर सारे पत्र हमारे पास हैं, या कहें ढेर सारे ईमेल हैं, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं ईमेल का सिलसिला और देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है हमारे श्रोताओं ने।
0: जी, तो ये पहला पत्र हमें मिला है डेढ़ पाटन गुजरात से। हमारे श्रोता हैं धीरज वी रवारी।
1: जी,
0: आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार, तकनीकी टीम तथा सभी श्रोताओं को आपका सादर नमस्कार। हमारा भी आपको सादर नमस्कार। आप कहते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर अपने श्रोताओं की फरमाइशों को ईमेल की गूंज तथा इंस्टा फरमाइश जैसे माध्यमों से पूरा करता है।

0: जिसके लिए आप हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने कार्यक्रम चिट्ठी पत्री की सराहना की है। आप लिखते हैं कि प्रमेंद्र जी, आप श्रोताओं के सुझावों का बढ़िया उत्तर देते हैं और समय समय पर प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव भी करते हैं। आपका सुझाव है कि यदि संभव हो तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य विषय पर आधारित एक फोन इन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाए, जिससे श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले सभी उद्घोषकों और सहयोगियों कल्पना, शक्ति, पॉलोमी यानी मुझे, तरुण, पूनम, मृदुल गुप्त, विजय, सुमन ठाकुर और अन्य युवा उद्घोषकों को हार्दिक बधाई भेजी है। आप आगे लिखते हैं कि किसानों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों से कृषि जगत की सटीक और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही घर आंगन और युववाणी जैसे कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद है। इन कार्यक्रमों के लिए आप कार्यक्रम प्रमुख प्रमेंद्र जी आपको तथा आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को हार्दिक बधाई और अभिनंदन प्रेषित करते हैं।
1: हमारी ओर से भी धीरज जी को नमस्कार। और देखिए, डेढ़ पाटन गुजरात से भेजे गए आपके स्नेह भरे संदेश के लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से भी आपको हार्दिक धन्यवाद। दूर रहकर भी आप जिस आत्मीयता से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, अपने विचार हम तक पहुँचाते हैं, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, किसानवाणी, घर आंगन, युवाणी जैसे कार्यक्रमों को आप पसंद कर रहे हैं और ये जानकर हम सभी साथियों का उत्साह और बढ़ जाता है। आपने हमारे उद्घोषक साथियों, कलाकार साथियों और तकनीकी टीम का जिस अपनत्व के साथ उल्लेख किया है, ये हम सभी के लिए प्रोत्साहन वाली बात है और हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आरोग्य पर आधारित फोन इन कार्यक्रम शुरू करने का आपका सुझाव बढ़िया है, उपयोगी है और हम इसे अवश्य ही अपने कार्यक्रमों में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे जागरूक और नियमित श्रोताओं के सुझाव ही हमें समय के साथ और भी बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह आप अपना स्नेह, विश्वास और मार्गदर्शन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और पॉलोमी जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी और परिवार के सभी सदस्य। आपने लिखा है कि 15 जून सोमवार की दूसरी सभा में प्रसारित कार्यक्रम चयन, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज और रात्रिकालीन सभा में रजनीगंधा कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया। इसे पेश करने वाली प्रस्तोता पूनम उपाध्याय जी की आपने तारीफ की है व सफल प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित की है।
1: रायगढ़ से हमारे प्रिय श्रोता नरेंद्र कुमार तिवारी जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। 15 जून की दूसरी सभा में प्रसारित चयन, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, रजनीगंधा कार्यक्रमों के प्रति आपने जो प्रेम और आत्मीयता व्यक्त की है, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे कलाकारों की प्रस्तुति को पसंद कर रहे हैं और आपके द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं और बधाइयां इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कलाकारों साथियों तक पहुंच रही है। श्रोताओं का स्नेह और विश्वास ही हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मान होता है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम हर कार्यक्रम में ज्ञान, मनोरंजन और अपनापन का सुंदर समन्वय बनाकर रखें ताकि हर श्रोता अपनेपन का एहसास कर सके। आपका निरंतर साथ, उत्साह हमें और भी बेहतर करने का प्रेरणा देता है। तो यही चाहेंगे कि आप इसी तरह अपने विचार, सुझाव और स्नेह भरे संदेश हमें भेजते रहिए। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। इसे हमें भेजा है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले ने। आप लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रति आपके मन में विशेष प्रेम और अपनापन है। आप पिछले लगभग 40 वर्षों से आकाशवाणी के श्रोता रहे हैं तथा वर्ष 2020 से आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आप बताते हैं कि समय समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा तथा सुझावों के माध्यम से अपनी सहभागिता भी देते रहे हैं। आपने सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री

0: परमेंद्र कुमार यादव जी के कार्य, नेतृत्व और प्रसारण सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही आपने यह भी लिखा है कि आपने अनेक नए श्रोताओं को आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। आप बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आप आकाशवाणी अंबिकापुर के विभिन्न कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग कर उन्हें श्रोता समूहों तक पहुंचाते रहे हैं, ताकि जो श्रोता किसी कारणवश कार्यक्रम ना सुन सके वे बाद में भी उनका आनंद ले सकें। आपका कहना है कि यह कार्य आप केवल आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार और अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं। आप लिखते हैं कि विचार बिंदु, चयन, घर आंगन, ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश और चिट्ठी पत्री जैसे कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद है। साथ ही आप चाहते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण सजैव, उच्च गुणवत्ता और त्रुटि रहित बना रहे। आपने अपने पत्र में हाल के एक प्रसारण के संदर्भ में कुछ असंतोष व्यक्त किया है। आपका मानना है कि प्रसारण के दौरान समय प्रबंधन और तकनीकी समन्वय पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि समाचार बुलेटिन तथा अन्य निर्धारित कार्यक्रम समयानुसार प्रसारित हो सकें। आपने यह भी लिखा है कि श्रोताओं के सुझावों और प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए तथा सभी श्रोताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आपका आग्रह है कि यदि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो तो उसका समाधान संवाद और स्पष्टता के माध्यम से किया जाए।
1: नमस्कार दिनेश काले जी, और जलगांव जंक्शन से आपने बड़ा ही विस्तृत और भावनाओं से भरा पत्र हमें लिख भेजा है। आकाशवाणी अंबिकापुर से आपके 4 दशक पुराने जुड़ाव, कार्यक्रमों के प्रति आपका स्नेह और उन्हें अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुँचाने का आपका जो स्वैच्छिक प्रस्ताव है, प्रयास है, ये सराहनीय है। इसके लिए पूरा आकाशवाणी परिवार आपका हृदय से आभारी है। आपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता, समयबद्धता और श्रोताओं की सहभागिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए हैं। आपके जैसे सजग और समर्पित श्रोता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी प्रत्येक प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक भावना से देखा जाता है और प्रसारण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उस पर निरंतर विचार किया जाता है। जहाँ तक कार्यक्रमों में नामों के चयन का प्रश्न है, हमारा प्रयास हमेशा से निष्पक्षता, समान अवसर और अधिक से अधिक श्रोताओं की सहभागिता सुनिश्चित करना रहता है। किसी कारणवश कभी किसी नाम का उल्लेख किसी दिन नहीं हो पाता, और तो यही कहेंगे इस बारे में कि उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। आपका विश्वास और अपनापन हमारे लिए अमूल्य है। कृपया अपना स्नेह और सुझाव बनाए रखें, इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार हमेशा आपके साथ है। आपकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता है, और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और अपनी बातें लिखकर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और पौलोमी जी, अब क्यों ना कुछ गीत संगीत हो जाए।
0: बिल्कुल प्रमेंद्र जी, तो आइए हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिर एक बार स्वागत है आपका चिट्ठी पत्री लाइव कार्यक्रम के आज के अंक में। अब पढ़ते हैं अगला पत्र जो छत्तीसगढ़ के चूड़ी लाइन मुंगेली से प्राप्त हुआ है। यह पत्र हमें भेजा है मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने। आप सभी ने चिट्ठी पत्री कार्यक्रम के प्रस्तोता को नमस्कार और

0: भरा आदाब प्रेषित किया है। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित होने वाला ईमेल की गूंज कार्यक्रम आपका अत्यंत प्रिय कार्यक्रम है। दिनांक 15 जून सोमवार को दोपहर में प्रसारित कार्यक्रम में सुनाए गए गीत आपको बहुत पसंद आए। आप कहते हैं कि गीतों का चयन बेहद सराहनीय था और उन्हें सुनकर आपका मन प्रसन्न हो गया। आपने कार्यक्रम की प्रस्तोता पूनम उपाध्याय जी की मधुर और प्रभावशाली प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप लिखते हैं कि उनकी शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। पूनम उपाध्याय के लिए आपने हार्दिक बधाई, कोटिशा धन्यवाद तथा बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है।
1: मुंगेली से हमारे प्रिय श्रोता मोहम्मद इसहाक जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा आदाब, हार्दिक नमस्कार। बड़ा ही प्यारा संदेश आपने लिख भेजा है और पढ़कर सुनकर मन सचमुच प्रसन्न हो गया। हमें खुशी होती है जानकर कि हमारे श्रोता कार्यक्रमों को सुनते हैं और नियमित रूप से सुनते हैं और पसंद करते हैं। आपने 15 जून को प्रसारित ईमेल की गूंज कार्यक्रम के गीतों का चयन आपको अच्छा लगा और पसंद आया, आपके दिल को छू लिया, ये बात लिखकर भेजी है। हमारे कलाकार साथी, हमारे उद्घोषक साथी को आपने जो स्नेह, बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं, वे निश्चित रूप से उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुँच रही है और उन्हें और भी प्रोत्साहित करेंगी, उन्हें कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए नई ऊर्जा देंगी। और श्रोताओं का ये जो अपनापन है, यही हम सभी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि संगीत, संवाद और भावनाओं के इस खूबसूरत सफ़र में हर श्रोता अपनेपन का एहसास करे। आप सभी का विश्वास और साथ ही हमें निरंतर बेहतर करने की प्रेरणा देता है। इसी तरह अपने सुझाव, फरमाइशें, स्नेह भरे संदेश भेजते रहिए। मुंगेली के पूरे परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, सलाम और मुस्कुराहटों भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और पोलोमी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र हमें अड़ार नानघाट से प्राप्त हुआ है। हमारे श्रोता है माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश एवं दीपेश वर्मा
1: जी।
0: आप सभी ने आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। आप लिखते हैं कि 13 जून को प्रातः 8:30 पर प्रसारित समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर उज्ज्वला और प्रवीणा जी द्वारा त्वचा रोगों के कारण, लक्षण तथा उपचार के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी आपको बहुत उपयोगी और प्रेरणादायक लगी। इसके लिए आपने डॉक्टर उज्ज्वला जी, प्रवीणा जी तथा आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई दी है। आपने आगे लिखा है कि 15 जून को दोपहर 1:40 पर प्रसारित ईमेल की गूंज कार्यक्रम में अनेक श्रोताओं के ईमेल शामिल किए गए तथा उनकी पसंद के सुंदर गीत सुनवाए गए। कार्यक्रम की आकर्षक प्रस्तुति के लिए आपने पूनम उपाध्याय और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप लिखते हैं कि 18 जून को प्रातः 8:30 पर प्रसारित सरगुजिहा साहित्यिक पत्रिका में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक संजय सुरीला जी से प्रशांत खेमरिया जी द्वारा की गई विस्तृत बातचीत आपको बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए आपने संजय सुरीला और प्रशांत खेमरिया तथा आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई दी है।
1: अड़ार नांदघाट के हमारे प्रिय श्रोता माखन वर्मा जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपका पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों की एक सुंदर झलक हमारे सामने आ गई हो। आपने डॉक्टर की सलाह में त्वचा रोग विषय पर दी गई उपयोगी जानकारी, ईमेल की गूंज में अपने मनपसंद गीतों की प्रस्तुति और सरगुजिया साहित्य पत्रिका में सुप्रसिद्ध गायक संजय सुरीला जी के रोचक संवाद को जिस आत्मीयता से सराहा है, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप जैसे सजग श्रोता हर कार्यक्रम को ध्यान से सुनते हैं, उसकी विशेषताओं को पहचानते हैं और अपने विचार हम तक पहुँचाते हैं, यही अपनापन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपकी शुभकामनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी शुभकामनाएं हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं, अतिथियों और पूरे आकाशवाणी परिवार तक इस कार्यक्रम के माध्यम से ही पहुंच जाती है। हम आगे भी ज्ञान, संगीत, साहित्य और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव

0: उत्साह बनाए रखिए। अड़ार नांद घाट के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब पढ़ते हैं अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। इस पत्र को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। आप सभी ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ की पावन धरती, इसकी सौंधी सौंधी मिट्टी और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना की है। साथ ही आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रति अपना विशेष स्नेह और लगाव व्यक्त किया है। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी उद्घोषक अपनी मधुर, प्रभावशाली और मनमोहक आवाज के माध्यम से श्रोताओं को ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कार्यक्रमों से निरंतर जोड़ते रहते हैं। आपने 12 जून शुक्रवार को प्रसारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया है। आप लिखते हैं कि तरुण कुमार और प्रियंका ने अपनी बेहतरीन शैली और आकर्षक प्रस्तुति से कार्यक्रम को अत्यंत रोचक बना दिया। अनेक श्रोताओं के पत्रों और ईमेल को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया गया यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया। साथ ही कार्यक्रम में सुनाए गए गीतों को भी आपने मोहक बताया। आपने आगे ईमेल की गूंज, आपकी पसंद और आपकी बात, आपके गीत तथा गांव कर गीत जैसे कार्यक्रमों की भी सराहना की है। विशेष रूप से विनितेश गुप्त की आनंदमयी प्रस्तुति को आपने अत्यंत प्रभावशाली बताया है। इसके अतिरिक्त गुंजन कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आया। आपने तरुण कुमार, प्रियंका, स्वाति, कल्पना, विनितेश गुप्त और समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को उनकी उत्कृष्ट, मधुर और सराहनीय प्रस्तुतियों के लिए हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने पत्र के अंत में आपने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। आप लिखते हैं कि कई बार सभी उद्घोषकों के नाम याद नहीं रह पाते क्योंकि कुछ प्रस्तोता अपना परिचय देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए आपका विनम्र निवेदन है कि सभी उद्घोषक कार्यक्रम के प्रारंभ और अंत में अपना संक्षिप्त परिचय अवश्य दें जिससे श्रोता उनसे और अधिक आत्मीयता से जुड़ सके।
0: जी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया के हमारे प्रिय श्रोता पवन कुमार सेन जी, आपके सभी मित्रगण, परिजन, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपका पत्र केवल एक संदेश नहीं बल्कि अपनी माटी, अपनी संस्कृति और रेडियो के प्रति प्रेम से भरी एक सुंदर अभिव्यक्ति है। हमारे कार्यक्रमों, प्रस्तुतकर्ताओं और गीत संगीत के प्रति आपने जो आत्मीयता दिखाई उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये जानकर खुशी हुई कि चिट्ठी पत्री, ईमेल की गूंज, आपकी पसंद, आपकी बात, आपके गीत, गांव के गीत और गुंजन जैसे कार्यक्रमों ने आपके मन को आनंदित किया। आपके स्नेह भरे शब्द निश्चित रूप से हमारे सभी उद्घोषकों और कार्यक्रम निर्माण से जुड़े साथियों का उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत और अंत में प्रस्तुतकर्ता अपना परिचय दें, यह सुझाव भी बहुत उपयोगी है। हम इसे अवश्य ध्यान रखेंगे ताकि श्रोताओं और प्रस्तुतकर्ताओं का जो अपनापन है वह और भी मजबूत हो सके। इसी तरह सुनते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी के लिए हमारी ओर से यही शुभकामना है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ जुड़े रहिए। आज के इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पलोमी जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र हम पढ़ते हैं पर उससे पहले क्यों ना एक गीत हो जाए प्रमेंद्र जी।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: इस गीत के बाद एक बार पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। और आज मैं आपके साथ हूं परमेंद्र कुमार, और हमारे साथ बनी हुई हैं पौलोमी जी। तो पौलोमी जी, आज अब आप किन का पत्र ले रही हैं?
1: तो ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता है प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार।

0: कुमार रामखिलावन सिंह पैकरा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निवानी, फूलसर कोरबा से नैनदास दीवान। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है। आप बताते हैं कि 12 जून को प्रसारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम आपको बेहद शानदार लगा। इसके आकर्षक प्रस्तुति के लिए आपने तरुण और प्रियंका को हार्दिक बधाई दी है। आपने आगे लिखा है कि 15 जून को प्रसारित बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आपको काफ़ी पसंद आया, जिसके लिए आपने स्वाति को बधाई दी है। इसी दिन प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम की सराहना करते हुए आपने शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। आप लिखते हैं कि 18 जून को प्रसारित माटी के आखर कार्यक्रम में सरगुजा अंचल के सुप्रसिद्ध गायक संजय सुरीला से प्रशांत खेमरिया द्वारा की गई बातचीत आपको अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए आपने उन दोनों को बधाई दी है। आपने यह भी लिखा है कि आप सुबह से लेकर रात तक आकाशवाणी अंबिकापुर के विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सभी कार्यक्रम आपको एक से बढ़कर एक लगते हैं। अपने पत्र के माध्यम से आपने सभी श्रोताओं को, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को और आकाशवाणी परिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप लिखते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अद्भुत संगम है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव कम होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। आपका संदेश है कि हम सभी को स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए नियमित रूप से योग और व्यायाम करते रहना चाहिए।
1: जी, सारसताल सोनगरा के हमारे प्रिय श्रोता प्रेम साय राजवाड़े जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, सादर नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय और प्रेम भरे शब्दों में आपने पत्र लिख भेजा है। जानकर खुशी होती है कि आप हमारे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, गुंजन, आपकी बात आपके गीत, माटी के आखर जैसे कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आपके मन में विशेष स्थान बनाकर रखे हैं। आपने स्नेह भरे शब्दों में हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं और पूरे कार्यक्रम की टीम के लिए प्रेरणा भरे शब्द लिख भेजे हैं और इसके लिए हम सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे के अवसर पर आपने जो सुंदर संदेश साझा किया है, सचमुच हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है और इस बात से हम सभी सहमत हैं। आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, ये जानकर हम सभी को खुशी हुई और हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों को सुनते रहिए और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहिए, अपने सुझाव, शुभकामनाएँ, स्नेह इसी तरह भेजते रहिए। आप सभी को एक बार पुनः हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और पलोमी जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, तो ये अगला पत्र हमें मिला है चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से। हमारे श्रोता हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश लहरे और कालिंदी लहरे। आप सभी ने अपने पत्र में आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रति स्नेह और सराहना व्यक्त किया है। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के 90 वर्ष पूर्ण होने तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मन की बात के अंतर्गत समय समय पर जो श्रोताओं के समक्ष रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं, वो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण और आकर्षक लगती हैं। आप आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के विभिन्न कार्यक्रम जैसे आपकी पसंद, युवा पसंद, हरसिंगार, महफिल क्रम, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज, गुंजन, नए तराने, चौपाल, विचार बिंदु, गूंजे जंगल, गाँव कर गीत, आपकी बात आपके गीत, घर आंगन, रामचरितमानस, गांधी चर्चा, खेती की बात, किस्सा कहनी, फिल्म संगीत, चित्रपट संगीत तथा समय समय पर प्रसारित होने वाली भेंट वार्ताएं आपको अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगती हैं। आपका कहना है कि सभी कार्यक्रमों में उद्घोषकों द्वारा की जाने वाली बातचीत और प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली होती है, जिससे श्रोताओं को उपयोगी और रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। आप सभी उद्घोषकों एवं आकाशवाणी परिवार को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
1: चिरमिरी कुर्सिया कालरी के हमारे प्रिय श्रोता इंद्रभान सिंह जी, आपके सभी मित्रगण, आपके सभी परिजन, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक नमस्कार, जय जोहार।

0: बड़ा ही स्नेह भरा पत्र आपने लिख भेजा है और हम सभी को खुशी मिलती है इस तरह के पत्रों को पढ़कर सुनकर। जानकर विशेष खुशी हुई कि आकाशवाणी के विविध कार्यक्रम आपकी पसंद, युवा पसंद, हर श्रृंगार महफिल, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज, गुंजन चौपाल, विचार बिंदु, गांव कर गीत, तमाम कार्यक्रम आप हमारे आकाशवाणी से प्रसारित सभी भेंट वार्ताएँ और विशेष कार्यक्रम को सुनते हैं। आपको ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और प्रेरणादायक लगती हैं। आपने मन की बात और विभिन्न विशेष प्रसारणों के माध्यम से दी जाने वाली रोचक एवं उपयोगी जानकारियों की सराहना की है और इन सभी बातों के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके जैसे जागरूक और नियमित श्रोता ही हमारी असली ताकत हैं और हमें हर दिन बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। आपका ये स्नेह और विश्वास हमारे लिए अमूल्य है। इसी तरह अपने सुझाव, विचार और शुभकामनाएं भेजते रहिए। चिरमिरी के सभी श्रोता साथियों को आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पौलोमी जी, अब पढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: जी, तो देखिए, ये अगला पत्र हमें मिला है ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता हैं खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, सितंबर मरकाम, सीताराम मरकाम, लकी मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरा लाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम। आप लिखते हैं कि आपको नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम बेहद अच्छा लगता है, चौपाल कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद है, इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम की आपने जमकर तारीफ की है, आपने 18 जून को प्रसारित गांव कर गीत कार्यक्रम को खूब सराहा है, पत्र के अंत में आपने पूरे आकाशवाणी परिवार को अपनी शुभेच्छाएं भेजी हैं।
0: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर के हमारे प्रिय श्रोता साथी खेलसाय मरकाम जी, आपके सभी मित्रगण, आपके सभी परिजन, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है आपने और जानकर खुशी हुई कि आपको चौपाल, इंस्टा फरमाइश, नमस्कार सरगुजा और विशेष रूप से 18 जून को प्रसारित गांव कर गीत कार्यक्रम बेहद पसंद आया। आपके स्नेह और उत्साह भरे शब्द हमारे सभी कलाकार साथियों और निर्माण से जुड़े साथियों के लिए नई प्रेरणा लेकर आते हैं। आकाशवाणी का प्रयास यही रहता है कि हमारी मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति, संगीत और जनजीवन की सरल भावनाएं हर श्रोता तक पहुंचे। जब आप जैसे श्रोता कार्यक्रमों की सराहना करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप सभी का प्रेम, विश्वास और निरंतर साथ ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी बातें, अपने सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। और पौलोमी जी, अब समय हो गया है कि एक बार फिर कुछ गीत संगीत हो जाए।
1: जी, तो मनोरंजन को आगे बरकरार रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फिर एक बार स्वागत है आपका कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव के आज के अंक में। मैं हूँ पौलोमी और मेरे साथ है परमेंद्र कुमार। और पढ़ते हैं ये अगला पत्र। इसे हमें भेजा है सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल ने। आपने आकाशवाणी अंबिकापुर और चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को अभिनंदन किया है। आप लिखते हैं कि आप हमारे विभिन्न कार्यक्रम जैसे घर आंगन, विचार बिंदु और ईमेल की गूंज समय अनुकूल सुनते हैं। घर गोसाइन कार्यक्रम भी आप सुनते हैं, यद्यपि हमारी सरगुजिया बोली आपको समझ नहीं आती और भाषा के कारण बातचीत समझने में कठिनाई होती है, फिर भी आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और आप सुनने का पूरा प्रयास करते हैं। आपने सभी कार्यक्रमों की सराहना की है और अंत में आपने हमें अपना स्नेह भेजा है।
1: सावरगांव महाराष्ट्र के हमारे प्रिय श्रोता रघुनाथ पाटिल जी, आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश एक छोटे से पत्र में आपने लिख भेजा है और जानकर प्रसन्नता हुई कि आप समय मिलते ही घर आंगन, विचार बिंदु, ईमेल की गूंज और अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से आपने घर गोसाइन कार्यक्रम के बारे में जो बात लिखी है, भाषा पूरी तरह समझ ना आने पर भी आप उसे सुनते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ने का जो आपका प्रयास है, ये सचमुच सराहनीय है। और कहीं न कहीं यही रेडियो की सबसे बड़ी खूबी है, भाषा की सीमाओं के आगे बढ़कर भी दिलों को जोड़ता है, अपनापन बांटता है। आपका ये स्नेह हमें और भी बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र से मिलने वाला आपका ये प्यार सरगुजा की मिट्टी की खुशबू को और दूर दूर तक पहुंचा रहा है। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे, अपने विचार भेजते रहेंगे और कार्यक्रमों का आनंद लेते रहेंगे। आज के इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पौलोमी जी, चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, तो ये कार्यक्रम का अंतिम पत्र है। इसे हमें भेजा है ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कुंती, मंगलराम प्रजापति और रिद्धि सिद्धि प्रजापति ने। आप लिखते हैं कि आप आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित सभी कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं। विशेष रूप से विचार बिंदु कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है। इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले नए नए विचार आपके मन को प्रसन्न करते हैं। आगे आप लिखते हैं कि प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे प्रसारित बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनकर आपको अच्छी और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। आपने 16 जून को प्रसारण का विशेष उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस दिन अक्षय रंजन वर्मा द्वारा शिक्षा से संबंधित अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक बातें साझा की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का आधार है। आप लिखते हैं कि 18 जून को प्रसारित साहित्यिक पत्रिका माटी के आखर कार्यक्रम में आपको संजय सुरीला जी को सुनने का अवसर मिला। उनके द्वारा प्रस्तुत सरगुजिया सांस्कृतिक गीत आपको बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगे। इस सफल प्रस्तुति के लिए आपने परमेंद्र जी आपको और साक्षात्कारकर्ता प्रशांत खिमरिया की प्रशंसा की है और पूरे आकाशवाणी परिवार की सराहना की है। आगे आपने 19 जून को प्रसारित गुंजन कार्यक्रम में प्रकृति से जुड़ी जानकारी को अत्यंत उपयोगी बताया। इस प्रस्तुति के लिए आपने विजय कुमार को धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: जी, तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर के हमारे प्रिय प्रजापति श्रोता परिवार, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार।

0: बड़ा ही विस्तृत और आत्मीय पत्र लिख भेजा है आपने, और लगभग सप्ताह भर प्रसारित सभी मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा आपने लिख भेजी है, और जानकर खुशी हुई कि आप हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले सभी कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं और उन्हें इतने ध्यान से आत्मसात करते हैं। आपने विचार बिंदु, गुंजन, माटी के आखर, प्रकृति पर आधारित विशेष प्रस्तुति और साक्षात्कारों को आत्मीयता से सराहना लिख भेजी है, और इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा, साहित्य, लोक संस्कृति, पर्यावरण जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रमों को आप जैसे जागरूक श्रोताओं का स्नेह मिलना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपकी शुभकामनाएं हमारे सभी कलाकार साथियों, अतिथियों और पूरे कार्यक्रम निर्माण के जो दल है उस तक इस कार्यक्रम के माध्यम से ही पहुँच रही है। हमारा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि ज्ञान, मनोरंजन और अपनी माटी की खुशबू से जुड़े ऐसे ही सार्थक कार्यक्रम आप सभी के लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, और हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा, उनके बारे में और कोई कुछ सुझाव हो तो वो भी हम तक लिख कर भेजते रहिए। हम आप सभी के पत्रों और ईमेल का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए, और पलोमी जी, आपने बताया कि ये आज का आखिरी पत्र है, तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समेटें आप हमारे श्रोताओं को पता और ईमेल एड्रेस बता दें।
1: तो आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमारे श्रोताओं की तरह ही हमें पत्र भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पीओ बॉक्स नंबर 27 और अंबिकापुर का पिन कोड है 497001।
0: और इसके अलावा आप हमें हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपनी बातें लिखकर भेज सकते हैं। तो हमारी ईमेल आईडी है phambikapurair@gmail.com। तो इन दोनों माध्यमों का उपयोग करें श्रोता, और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजें। और इसी के साथ चिट्ठी पत्री के आज के अंक से मुझे यानी परमेंद्र कुमार को
1: और मुझे यानी पौलमी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे अपने पत्रों का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार,
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियत नीलानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचाने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन

20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। वन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक स्तर के 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 17 जून को रावघाट रेल खंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान 58 रेक का उपयोग किया गया। करीब 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के बाद सुरक्षा स्वीकृति मिलने पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी। इससे बस्तर क्षेत्र में आवागमन, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.0 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सीआईईटी और एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज

0: आयुषी और मीहू का लिखा है। नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्त,

0: मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?

0: है।
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
1: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को
0: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर,
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू

के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं।

उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे

थैली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई।

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं।

0: त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

कार्यक्रम चयन में आपका स्वागत है। आज कुछ खूबसूरत गीतों का कारवा लेकर मैं हूं आपकी रेडियो साथी पॉलोमी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था छिछोरे, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था प्रीतम ने।

अपना हाल लोग बता नहीं पाते, क्या क्या कहना बाकी है जता नहीं पाते। उनकी हालत क्या से क्या हो गई किसी को पता नहीं। वो अपना प्यार बयां नहीं कर पाते। आइए इसी बात पर आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

हर्षित सक्सेना की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मर्डर टू। गीतकार थे सईद कादरी, संगीत दिया था हर्षित सक्सेना ने। दिलों का हाल भी मौसम की तरह है, कभी भी बदल जाता है। और इस वक्त मौसम का जो हाल है वो कई लोगों का हाल है। कोई इन दिनों बादलों को देखकर झूम रहा होगा, तो कोई किसी को याद कर अपनी आंखों को बरसा रहा होगा। मोहब्बत करने वालों का बुरा हाल है।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म बागबान का ये गीत। गीतकार थे समीर, संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। सुनते रहिए कार्यक्रम चयन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
4: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
5: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
4: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
5: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
4: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

करे। अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था बेशरम। गीतकार थे राजीव बर्णावल, संगीत दिया था ललित पंडित ने।

इश्क में आशिकों का हाल न पूछो, उनको नींद कहाँ और चैन कहाँ। मौसम की तरह कभी गरजते हैं उम्मीद के बादल, कभी बरस जाते हैं ख्वाबों के मंजर। किसे बताएं दिल का हाल, जिसे चाहते हैं उसी से तो छुपाते हैं।

0: सोनू निगम की आवाज़ में गीत आप सुन रहे थे। साथी कलाकार थे आफताब सबरी, हाशिम सबरी। फिल्म का नाम था मैं हूं ना। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था अनु मलिक ने। तो उम्मीद है आपका भी हाल अच्छा होगा इन्हीं गीतों के साथ, जिनमें शायरों ने हर दीवाने का हाल बयां किया था। फिलहाल मौसम का हाल बेगाना है तो अपना ध्यान रखिएगा। अब इस कार्यक्रम से बहरहाल मुझे यानी पौलमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में राष्ट्रीय समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय

0: सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279807 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है आलू की खेती से लाभ।
1: भारतवर्ष में आलू की फसल वर्ष भर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू का लगभग सभी परिवार किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसका सभी व्यंजनों में उपयोग होने के कारण इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू एक महत्वपूर्ण आहार तथा कम समय में पैदा होने वाली एक फसल है तथा इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होने के कारण इन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या के समाधान का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही अन्य पोषक तत्व भी इसमें उपलब्ध होते हैं। आलू की फसल में खरपतवार, कीट एवं रोग से 42% हानि होती है। आलू की फसल में विभिन्न कीट एवं व्याधियों के उससे उत्पादन व गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और इस कारण बाजार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में आलू के उत्पादन में पिछले 60 वर्षों में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1940 में जब क्षेत्र में उगाया गया जिसमें 1.54 मिलियन टन उत्पादन शुरुआत में हुआ, वर्ष 2013-14 से लेकर आज तक लगातार इसका क्षेत्रफल, इसका रकबा बढ़ता जा रहा है। हम देखेंगे आलू का क्षेत्रफल लगभग आज 10 गुना में वृद्धि हो चुकी है। यदि प्रति व्यक्ति उपयोग को देखा जाए तो यूरोप तथा कई अन्य देशों में आलू का उपयोग 100 से 120 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष है, जबकि भारत में यह लगभग 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष है। आलू की खेती के लिए जीवाणु युक्त बलुई एवं हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है। अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। आलू की फसल हेतु अधिक अम्लीय एवं क्षारीय तथा जल भराव वाली भूमि कदापि न चुने। गर्मियों में मई से जुलाई तक खेत की जुताई करने से मिट्टी जनित बीमारियों तथा खरपतवार को कम किया जा सकता है। आलू की बुआई से पूर्व हरी खाद वाली ढेंचा मूंग उड़द खेत में लगाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की 2% कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और आलू को पैदावार 3 टन तक बढ़ जाती है। आलू की फसल के लिए मिट्टी को अधिक खुली और भुरभुरी बनाए रखने के लिए बुआई से 6 से 8 सप्ताह पूर्व मिट्टी पलटने वाले भारी हल तथा हैरो से 2 बार अथवा कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेतों को समतल कर उचित नमी बनाए रखने हेतु पलेवा करने करके पुनः कल्टीवेटर से 2 जुताई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से 10 दिन पहले ग्लाफोसेट 42% प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर दबा कर घोल बनाकर छिड़काव करने से खरपतवार में कमी आती है। फसल बुआई के 15 से 20 दिन पूर्व अच्छी सड़ी गोबर की खाद तथा कंपोस्ट 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन की उचित मात्रा आलू की फसल के लिए 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के लिए 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। फास्फोरस की संतुलित मात्रा में पौधों में कंदों की संख्या बढ़ाने के अलावा अंदर की बनावट में विशेष योगदान प्रदान करती है। आलू की अच्छी उपज के लिए जड़ोड़ दोमट तथा काली मिट्टी में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा अनुकूल समझी गई है, जिसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आलू के अच्छे उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी 100 से 120 किलोग्राम पोटाश प्रति

0: ट्रैक्टर की दर से बुआई के समय देना लाभदायक होगा। पोटास की आपूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट आलू के लिए उर्वरक के अच्छे स्रोत माने गए हैं। बीज सदैव रोग रहित स्वस्थ शुद्ध प्रजाति का प्रयोग करें। मध्यम आकार वजन ग्राम में जिसका भार 35 से 40 ग्राम हो, बिना कांटे प्रयोग करें, जिसमें एक स्थान पर कई पौधे होते हैं और उत्पादन में इजाफा होता है, क्योंकि बीज का पैदावार खर्च में 30 से 40 भाग ही हिस्सेदारी होती है। बुआई से कम 10 दिन पूर्व शीत भंडार से आलू के बीज को निकाल लें। बीज की बोरियों को कम से कम 24 घंटे तक आवितन कक्ष में रखें। बीज अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बीज को फफूंद एवं बैक्टीरिया जनित छुआछूत रोगों से सुरक्षा के लिए एग्लाल 3% के 250 ग्राम के 250 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को शोधित किया जाना चाहिए। आलू के ब्लैक स्कार्फ रोग से बचाव के लिए कंद या कंदों के टुकड़ों को बुआई के पूर्व 0.5% एरिटान टेफासॉन, 6% पारायुक्त घोल में 2 मिनट दुबाने के उपरांत बुआई के करने से सुरक्षा हो जाती है। बुआई का सर्वोत्तम समय अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 18 से 20 के मध्य होता है और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आलू की अगेती फसल सितंबर एवं अगस्त में दी जाती है। मुख्य फसल अक्टूबर नवंबर तथा देर से या बीज बोने वाली फसल दिसंबर एवं जनवरी में बोई जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

जय जोहार संगी हो, मैं हूँ सुमतिया बहिन आकाशवाणी अंबिकापुर से। आप मन सुनता कार्यक्रम घर गोसाइन संगी मन के बहुत बहुत स्वागत है। और बताई रहा और मन देखी खेती बाड़ी के काम बुतार कैसे चलता है, जोर शोर से देखी हमार सियान मन चाहे हमार भैया बहनी मन देखी खेती बाड़ी में जुट गई है। और संगे संगे देखी घरे बड़का लड़का हुए चाहे घरे बहनी हुए बेटी हुए जम्मो छन अभी देखी खेती बाड़ी में भिड़िन हवे। और यही समय है तो देखी हमार खेती बाड़ी की तैयारी करना। और संगे संगे देखी हमार लैका मन के स्कूल मन भी खुल गई से है, जेकर पूरा देखी कापी किताब बस्ता मन के तैयारी भी चलता है। मैं तो यही कहूँ कि देखी नोनी रहे चाहे बाबू दोनों झनला शिक्षा के अधिकार है। आप मन दोनों झनला बिना भेदभाव के शिक्षा दे। खेती बाड़ी तो हमन करत रहो, कभी कभी ऐसे हो जाते खेती बाड़ी के चक्कर में हमन नोनी मन के स्कूल मन ला रुकवा दे हते, तो ऐसे नहीं करना है। देखी पढ़ लिख के आए के काम बूता कर सकता है लड़का मन भी। संगे देखी सियान मन कर गोइठ करें और देखी हमार खेती बाड़ी के गोइठ करें, तो मोर मुके एक ठन गोइठ हर सुरता इस कि आगू कर जितना सियान मन रहें भाई और भैया बहनी मन भी रहें, बड़ा आपसी तालमेल बिठाए के चलें, चाहे गांव रहे चाहे घर घर परिवार के गोइठ रहे चाहे आपसी सामंजस्य के गोइठ रहे, हर चीज़ ला बड़ा तालमेल से बिठाए के चलें। और बड़ा आसानी से घर भी चल जात रहीस, बड़का बड़का परिवार भी संगे रहत रहीन, उतरे मेल मिलाव गांव घर से भी रहत रहीस। हमर बुजुर्ग मन देखी हमर सियान मन बहुत अमूल्य चीज ला संजोए के आज हमर देखी असली पहचान बनाइन हवे। और आपसी भाईचारा प्रेम सहयोग और समुदाय कर एकता ला बचाए कर कोशिश भी करीन और बचाए के राखीन भी हैं। और घनी देखी ऐसा होत रहीस कि तू सुख होए चाहे दुख होए हमन पूरा गांव भी जुट जात रहें, जेकर घर सुख दुख के गोट होत रही चाहे घर शादी होए चाहे ब्याह होए चाहे अरनी मरनी होए जमो जात में हमन पहुंच जात रहें, पूरा गांव खड़ा हो जात रहीस। वही चीज़ आजकल देखे बर थोड़ा कम भेटा थे, हमन थोड़ा दुरियाँ दुरियाँ हो गए हन। देखी जैसे कहें कि बेटी बहनी के शादी ब्याह है पूरा गाँव हर खड़े हो जात रहीस, और देखी बेटी बहनी के शादी रहे चाहे पढ़ाई के या कोई भी समस्या रहे बड़ा आसानी से हल हो जात रहीस। एक दूसर कर छोटे बड़े कर देखी आदर सत्कार सम्मान करत रहीन, एक दूसर ला इज्जत देहत रहीन। तो वही तो देखी वही घनी तो हमार कही मानी कि असली पूंजी रहीस, यही सब गोठर तो हमार मायने रखत रहीस जिंदगी में।

हमर सियान मन देखी खेतियों बाड़ी ले इतना बढ़िया जुड़े रही नोमन ला देखी आजकल तो इतना आधुनिक हो गए हैं ननी बनी के मशीन बिना काम नहीं हुए लेकिन ओघनी बिना मशीन मन के देखी बढ़िया ले बढ़िया खेती बाड़ी कर ले हैं बढ़िया बिना देखी खाद बीरो के भी बढ़िया अपन घरेच रही के देखी गोबर खाद ले ए खाद ले वो खाद बनाए बनाए के देखी बढ़िया खेती बाड़ी करत रही जेहर हमन ला सेहत ला भी कोनो नुकसान नहीं पहुँचात रही संगे देखी बड़ा बढ़िया ज्ञान रही सोमन ला कि बीज कैसे होना चाहिए कौन सा बीज हमर बर कौन घनी बढ़िया रही ये सब देसी बीज के बड़ा पहचान रही सोमन ला पेड़ पौधा रुख रही के बड़ी जानकारी रही कि देखी हमन एला कौन तरह से आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर सकत हन एकर पहचान कैसे कर सकत हन एकर से का बीमारी ला ठीक कर सकत हन संगे देखी पशुपालन कर सकत हैं आगू के लोग मन देखी बड़खा बड़खा ऐसन में करें पशुपालन करें और ओकर समझ बूझ के संग संग देखी अपन प्रकृति के प्रेम के संग संग देखी ओला संरक्षण करना ओके सुरक्षित करना संजोए के रखना पानी के गोट होए चाहे हमर जितना संसाधन कर हमन उपयोग करथन अंधाधुन ओघनी देखी सोच के समझ बूझ के उपयोग और इस्तेमाल करत जात रहीस और संगे हमर सभ्यता संस्कृति तीज त्यौहार लोकगीत लोक नृत्य मांदर लोक कथाएं कथा कहनी नाटक ये सब कर बड़ी महत्व रहीस तो मैं तो यही कहूँ कि देखी आज के समय में हमर बुजुर्ग मन जितना देखी हमर जो संस्कार सम्मान परिवार के एकता ला संजोए के रखे रहीन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है वो घनी मेहनत ईमानदारी और धैर्य कर महत्व रहत रहीस खेती किसानी प्रकृति से जुड़ल ज्ञान ला बचाए के उमन राखीन लोकगीत लोक कथा और ग्रामीण संस्कृति के साथ देखी आगू बढ़त रहीन गाँव कर कहूँ तो पुराना जो परंपरा है त्यौहार मिलजुल के मनाल जात रहीस तो और जैसे कहें कि सुख दुख में ककरो सुख दुख होए भाई सब में खड़ा रहत रहीन सांझ ज्वार देखी चौपाल में बैठे समूह में बैठे और संगे धेरे गोड बात करें बड़खा बड़खा परेशानी हल कर लेहत रहीन और बड़खा कर देखी घरे जो भी सियान रहे बुजुर्ग रहे ओकर सम्मान करें ओकर सलाह ला मानत रहीन ये सब देखी कहाँ आज हमन जमो जाएत ला धीरे धीरे गंवाए देहन जो हमार बुजुर्ग मन संजोइन ओला आज हमन कहो ना कहो धीरे धीरे गंवाए देहन जैसे कि आपसी मेल जोल भाईचारा हर कम हो गई सा है देखी बड़का के साथ कितना हमन ला समय बिताना है घर परिवार के साथ ये में कमी दिखते लोक संगीत पारंपरिक खेल हर देखी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है प्रकृति और पर्यावरण से जो जुड़ाव रहीस वो और चटिक कम हो गई से है आज कर पीढ़ी ला हमन ला कुछ देखी सीखना चाहिए जैसे कि आधुनिकता के संग संग अपन संस्कार ला भी जरूर संजोए और देखी अपन आप में उतारें ताकि देखी ये हमर जो पीढ़ी दर पीढ़ी देहल गई से है यह कहीं विलुप्त जिन हो जाए और बुजुर्ग मन के अनुभव से सीख लेना चाहिए हमन ला करे घरे अगर बड़खा है कोई सियान है दई बुआ बाबा काका मना है तो मन से कटिक सलाह उलाह ले लेना चाहिए और देखते ही गाँव में संस्कृति और परम्परा जो हमर जो आगू चलत आत रहीस जेकर से हमन जुड़े रहन हमर सभ्यता संस्कृति लोक नृत्य हमर जम्मू जाए थर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए धीरे धीरे हमन आधुनिक तो हो गए हन आधुनिक तक में बढ़ तो गए हन लेकिन कहीं ना कहीं हमार सभ्यता संस्कृति हर पीछे छूट जाता है तो जम्मू जायत ला हमन ला देखी आगे बढ़ाना है आए वाला पीढ़ी ला भी दिखाना है कि देखी हमन कैसे अपन जिंदगी ला हमार बाबा काका मन जीन वही कस हमन आज भी जी सकत हन अपन सभ्यता संस्कृति ला बचा सकत हन आधुनिकता की ओर बढ़ी लेकिन अपन परंपरा संस्कृति सभ्यता ला बचाए के चली संगी हो देखी ढेरे चकन गोइट बात करें संगी मन भी कहत हुई ढेरे टुरबुरात है बहनी हर गोइत मला भी नहीं सुनाता है तो चली मोर जग एकदम सुघर अगन लोकगीत है ला सुनल जाए

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन भोजपुरी लोकगीत सुनन सुमंत पटेल और संगी मनकर गाल गीत रही। संगी हो आज दिन हवे कथा कहनी कर, और कथा कहनी में मैं देखी छोटकुन कहनी लाने हूँ तो संगी मन से देखी साझा करूँ कहनी ला सुनाहूँ। देखी एक ठन गांव रहीस, वो गांव में

दू ठन भाई मन रहत रहिन। बड़का भाई हर देखी ओकर बिहाव हो गए रहिस और छोटका कर नाझो होए नी होए रहिस, पढ़त लिखत रहिस। बड़का भाई कर देखी बाल बच्चा रहिन, लेकिन दोनों भाई मन अलगेच रहत रहिन, अलग अलग उमन घरे रहत रहिन। और देखी सियान मन कर देहल एक ठन खेत रहिस, जेमे दोनों भाई मन मिल के कमात रहिन, खेती बाड़ी करत रहिन, फसल उगात रहिन। और जब फसल मन हर उग जाए तो उमन देखी आधा आधा बाँट लेहत रहिन, छोटे भाई हर आधा बाँट लेहे, बड़ा भाई हर आधा बाँट लेहे, और खेत हर एक ही गोच रहिस, वही खेत में खेती करत रहिन। एक दिन छोटे भाई हर सोचिस, मोर बड़का भाई के तो देखे परिवार हर बड़का हवे, बड़का भाई के परिवार ला अनाज के बगरा जरूरत पड़त होही, उमन के परिवार हर बड़का हवे। तो छोटे भाई हर देखी फिर का अपन हिस्सा के अनाज ला बोरी ला उठाए के अपन बड़का भाई के कोठी घरे रख देहिस ले जाए के। अविते बड़का भाई हर सोचिस कि मोर भाई ला पढ़ना लिखना है, अपन जिंदगी ला गढ़ना है, तो ओकर भविष्य बर मैं अपन अनाज के कुछ बोरी ला भाई कर गोदाम में रख दहूँ, तो दू पैसा भाई जोड़ के राखी और ओकर आगे कर सहारा बन जाही, पढ़े लिखे में आसानी हो जाही। ऐसे सोच के बड़का भाई हर अपन अनाज के बोरी ला छोटे भाई के गोदाम में रख आइस। कई महीना तक देखी यही कस चलत रहिस, एक दूसर के गोदाम में दोनों भाई मन अपन अनाज के बोरी मन ला रखत रहिन, ऐसे ही अदला बदली चलत रहिस। और बड़का भाई के गोदाम में देखी अनाज के कमी होए ना, छोटे भाई के गोदाम में अनाज के कमी होए, बड़ा आश्चर्य होए गईन दोनों भाई कि ऐसे कैसे होता है भाई, अनाज के कमी तो होना चाहिए, कहे कि एक दूसर भाई में तो छोटे भाई ला दे देता हूँ, छोटे भाई सोचे मैं तो बड़का भाई ला दे देता हूँ, तो एक अदला बदली भाई करें तेहूले कम नहीं होए अनाज हर, तो बड़ा आश्चर्य हो इन दोनों जन। एक दिन राती ऐसा होइस कि देखी एक दूसर के देखी अनाज के बोरी ला धर के हिकलत रहिन घर ले, आउ दूसर कति देखी छोटे भाई घर हिकलत रहिस घर के दूरा में खड़े रहिस। तब दोनों भाई एक दूसर के देख के हंसे लागिन कि बड़ा भाई आश्चर्य के गोइठ हवे कि हमन दोनों भाई बोरा ला धर के एक दूसर के कोठी में राखत हन कहिके। ऐसे ओमन कर भाई फिर मन में देखी हंसे लागिन, और मन ही मन देखी दोनों झन मुस्कुराए लागिन, और मन ही मन सोचे लागिन कि मोर भाई मोर बर कितना प्रेम राखथे, कितना सोच राखथे, सहयोग के भावना हवे, फिर का होइस संगे हो। यही जग देखी भांडा फूट गईस भाई, दोनों भाई के पोल पट्टी हर खुल गईस कि मन एक दूसर बर भाई निस्वार्थ प्रेम ला देख के, एक दूसर के भाई त्याग ला देख के, कि दोनों भाई के देखी आँखी हर चटिक नम हो गईस एक दूसर ला देख के, कटिक रोए लागिन और एक दूसर ला देखी गले लगाए लेहीन ए गोट ला भाई देख के, ए समय ला देख के। जब ये गोट हर देखी पूरा गांव के सामने आईस, गांव के पंच सरपंच मन जमो झन सुनिन, तो कहिन कि देखी यही तो सच्चा प्रेम हवे, सच्चा भाईचारा हवे। संगी हो देखी ये छोटा सा कहानी से तो हमन ला यही सीख मिलते, परिवार तब बनते जब परिवार के मनखे मन के अंदर प्रेम त्याग दूसर के प्रति चिंता सबले बड़खा धन होते, जिमें आपसी प्रेम सहयोग के भावना होते, वही घर में देखी सुख समृद्धि कर वास होते, धन ले बड़खा रिश्ता प्यार कर होते, और एक दूसर के भलाई कर सोच रखे वाला व्यक्ति सच्चा इंसान होते। हमन जानती ये गोटला समझ थी, लेकिन जैसे कहें कि हमार आगू के जितना बड़खा बड़खा बुजुर्ग मन सियान मन रहिन, ओमन यही चीज मन ला तो संजोए के राखे रहिन, जो धीरे धीरे देखी ये सब हर खत्म हो जाते, एक दूसर के प्रति त्याग भावना, एक दूसर के प्रति चिंता, छोटे बड़े कर आदर सत्कार सम्मान सहयोग कर भावना, खाली अपन बारे में सोचना, ये तो देखी भाई अपन एक स्वार्थ ऐसा हो गई सही कि बस अपन काम निकले, बाकी दूसर कर हमन ला कुछ नहीं सोचना है, चाहे ओकर भला होए चाहे बुरा होए, यही सब हर तो देखी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते है। तो ये छोटा से कहानी से हमन ला यही सीख मिलते कि देखी धन उतना बड़ा महत्व नहीं रखते, अगर अपन देखी परोपकार कर भावना है तो हमन मन में ही खुश रहो, और कथे नहीं मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही गोट हवे, अगर अपन आप ला खुश रखना है तो एक दूसर के प्रति सहयोग के भावना रखना बहुत जरूरी है। संगी हुए आज कर कथा कहनी रहीस, कैसन लागिस आप मन हमन ला जरूर लिख के भेजियो, और बतइयो कि मोर गाना मन हर हमर गीत मन हर लोकगीत मन हर कैसे लागत है, एक बार देखी ईमेल आईडी बताए दहूँ, ईमेल आईडी है ghargosain@gmail.com, तो आप मन झटकुन हमन ला ईमेल करी फटकुन हमन ला भेटा जाही। तो चलिए।

हाँ तो संगी हो देखिए सुघर अकन हमन गीत ला सुनेन भाई बड़ा सुघर समय लाल प्रजापति और संगी कर गाल गीत रहीस। संगी हो देखी हमन ढेरे चकन गोट बात करत ही और संगे संगे देखी ए समय में हमन जे तरह से खेती बाड़ी जैसे करत हन ओमे देखी जितना मोटर है पंप है चाहे हमर घर में देखी अभी कूलर है पंखा है टीवी है जमो जायत हमर देखी बिजली से चलत है। और देखी जैसे मैं कहे जितना भी संसाधन है हमर हमन बढ़िया ले इस्तेमाल करत ही उपयोग करत ही कोयला होए चाहे पेट्रोल होए चाहे डीजल होए ये जितना संसाधन कर इस्तेमाल करत ही उतना आय

वाला समय में देखी, पीढ़ी में देखी, आगू जो हमर लइका मन है ओ मन पर कुछ हो नहीं बाछी। तो फिर देखी आजकल कोई भी काम बूता रहते तो हमन झटकुन गाड़ी से चले जाती। और भाई आए वाला समय में तो डीजल पेट्रोल कोयला जमो जाए, थर बिजली बाती खत्म हो जाही। तो लइका मन तो कहीं कि बाबा तय तो चले मोटर गाड़ी में और मैं चलो बैलगाड़ी में, कहे कि वही समय हर फिर वापस आ जाही। तो हमन ला छोटा सा कोशिश करना है कि देखी जितना भी प्राकृतिक संसाधन है एकर देखी हमन ला कम उपयोग करना है, जरूरत पड़े पर उपयोग करना है, ना कि देखी बिना काव के अंधाधुन उपयोग कर। आघू भी रहीस हर जय थर, लेकिन हमर जितना बुजुर्ग मन रहिन सियान मन रहिन अपन देखी जितना भी हमर संसाधन है ओकर बड़ा कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ओमन करके ओमन अपन बढ़िया सुविधा लय सकत रहिन पाए सकत रहिन, लेकिन ओमन भी बचाए के चलत रहिन, ओहू मन प्रकृति के संग चलत रहिन। लेकिन आजकल तो हमन देखी प्रकृति कर खिलाफ चलती, तो इसने हमन झेलत भी ही खेती बाड़ी में कही, चाहे मौसम में कही, चाहे मौसम के परिवर्तन होता है एमें कही, जो भी हमार प्रकृति के जो चक्र हवे ओमें जितना भी बदलाव आता है ये हमरे वजह से आता है। वही जब छोटा सा हमन कोशिश कर सकत हन देखी सौर ऊर्जा कर, सौर ऊर्जा हमन जानत ही कि सूर्य के किरण हमन भेटात है, संगे स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा कर एक अच्छा स्रोत हवे। सोलर पैनल कर सहायता ले हमन जो जितना भी सौर ऊर्जा के बिजली में हमन बदल सकत हन, संगे हमन देखिए कर उपयोग करत ही तो हमर बिजली बाती में बढ़िया कमी आ जाही। आज के समय में बिजली कर देखर बढ़त मांग ले प्रदूषण कर भी समस्या देखे पर भेटात है। सौर ऊर्जा कर महत्व तो बहुत ही बढ़त जाता है, हमर जितना कोयला पेट्रोल डीजल जैसे संसाधन सीमित है, जबकि हम जानत ही कि सूरज से निकले वाला जो किरण है ऊर्जा है वह हर असीमित हवे। तो हमन एकर उपयोग करके भविष्य में हमन ऊर्जा ला बचाए सकत हन और आए वाला पीढ़ी ला दे सकत हन। एकर से बहुत सा हमन काम कर सकत हन, बिजली बाती ले लेके घर दूरा के काम ले लेके बड़े बड़े फैक्ट्री ले काम कर सकत हन। तो देखिए ऐसे करी एहू ला बचाई ताकि हमार आए वाला पीढ़ी ला एक तोहफा के तौर में दे सकी। चलिए एक जग मोर जग सुघर अकन गीत है ला सुनाता हूँ।

आओ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन गीत ल सुनेन गुलाब सिंह पैकरा कर गाल छत्तीसगढ़ी गीत रहिस। संगी हो आज कर कार्यक्रम में कैसे लागिस हमन ला जरूर से जरूर बताई हो। और देखी जात जात यही कहूँ कि देखी खेती बाड़ी के समय है, लइका मन के स्कूल मन भी खुल गई सवे और संगे संग देखी हमार बहनी मन के काम बढ़ गई सवे। तो ऐसे में देखिए अपन स्वास्थ्य कर भी तिहा जतन करी, खेती बाड़ी के तैयारी के संग संग देखिए अपन स्वास्थ्य कर तिहा करी, बगरा से बगरा बढ़िया पानी पी, तला भुना कम खाई। आजकल देखिए बर बीमारी झटकुन हो जाता है, तो देखी जाए के समय हो गई है। जात जात ही कहूँ स्वस्थ रहिया मस्त रहिया, फिर भेटा हूँ सुमतिया बहन ला दा विदा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। दोपहर के 1:40 हो चुके हैं। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए अब पेश है आप सभी का चहेता ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज की आज की कड़ी लेकर मैं हूं आपकी रेडियो साथी पौलोमी। आइए आप सबकी फरमाइश सुनते हैं और उस पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें पहली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, मजनू का टीला से कमल बालोजा, मधु बालोजा, सागर बालोजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, नागपुर से प्रकाश रामभड़े, भारती रामभड़े, जानवी रामभड़े, वैष्णवी हर्षल रामभड़े और प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी,

मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नुहाकर, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, और वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनाते हैं आप सभी को कार्यक्रम का ये पहला गीत।

बॉम्बे जयश्री की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत से सजाया था हैरिस जयराज ने। आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम की अगली फरमाइश। इस गीत को सुनना चाहते हैं दत्तरंगी से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, अनोखेलाल वर्मा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। धनोरा बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू। शिवांशु, रीशु, वी चैतन्या, दुर्गेश कुमार, अभिषेक नायडू। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। मेन रोड तेलहरा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, कुमारी सुजाता पोहारकर। शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके। बालाजी चौक से ओ टी श्रीवास, शेख आज़ाद, पोपो रानी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोथ। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और नेवानी परिवार के सभी सदस्य। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन, इंदु सेन। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। मालवा रेडियो श्रोता संग्राम हिंगड़ी, अलोट जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिखा था महबूब ने, संगीत दिया था एआर रहमान ने। फिल्म का नाम था 1-2 का 4। आइए अब सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े, कोड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, ग्राम पीपरलोड़ सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ये मुंगेली के हमारे श्रोता हैं। बोरखेड़ा पित्रमल जिला उज्जैन महाराष्ट्र से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नहाटा, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, झालावाड़

राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, रघुबीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, उमा तिवारी, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। आइए आप सबको सुनाते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

हरिहरन और स्वर्णलता के आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था रंगीला। गीतकार थे महबूब, संगीत दिया था A.R. रहमान ने। आइए अब सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेव पारा, पोस्टल है पटरा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सूरजपुर छत्तीसगढ़ के रामानुज नगर श्रीनगर से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामोड़ा के ये श्रोता हैं। और ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नैन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता और आरती मरकाम। और बिहार स्टेट डुमरी से वलीउल्ला अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। आप सबको सुनाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।

चित्रा और अभिजीत की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अशोका, गुलजार की शब्द रचना थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम में जाते जाते सुनाते हैं आपको हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, बापू भाई। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदिबा, डॉक्टर हगीना। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूर, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा, करणदीप। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोड़वाल, कमला रानी, गीतिका खोड़वाल, भानु प्रकाश। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनाब मुजावर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। और बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर। आप सभी श्रोता हमारे पार नवापारा से हमें सुन रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जिस्म, गीतकार थे नीलेश मिश्रा, संगीत दिया था MM क्रीम ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज की आज की कड़ी से मुझे यानी पॉलमी को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपको बता दें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं emailkigoonj यानी कि ईमेल की गूंज @gmail.com पर। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हो रहे हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। MyGov इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।

0: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यक

0: आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 917827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई।

0: राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा।

कार्यक्रम गीत गंधा में आज मैं हूँ पौलोमी, और बाहर जिस कदर मौसम बदला है उस पर आपको सुनाते हैं शुभा मुद्गल की आवाज़ में ये गीत।

शुभम उद्गल की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत दिया था शुभम उद्गल ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, स्वर संगीत और शब्द रचना मीका सिंह की।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिर एक बार स्वागत है आपका कार्यक्रम गीत गंधा में। अब सुनते हैं लकी अली की आवाज में ये नगमा।

लकी अली अक्स की आवाज़ में ये नगमा आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं आशा भोसले का गाया ये गज़ल। इसके शायर हैं शबीह अब्बास, संगीत दिया है गुलाम अली ने।

जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। रश्मि विराग ने गीत के बोल लिखे थे, संगीत दिया था पायल देव ने। और इसी के साथ कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनते हैं। यूफोरिया बैंड की रचना है ये, इसे गाया है पलाश ने, गीतकार हैं पलाश और दीक्षांत, संगीत दिया है पलाश ने।

पलाश की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया बैंड की ये रचना। गीतकार थे पलाश और दीक्षांत, संगीत दिया था पलाश ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत गंधा का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अब अपनी रेडियो साथी पॉलोमी को दीजिए इजाजत।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब आपको बता दें आज के हमारे शेष आकर्षण।

शाम 5 बजे हम आपके लिए लाते हैं जंगली हाथियों से जुड़ी जानकारी और उनके विचरण क्षेत्रों के बारे में प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। आज शाम 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हम दिल्ली से रिले करेंगे। युवाओं की वाणी युवाणी आज आप सुनेंगे शाम 5:40 पर। इसमें आज का आकर्षण क्रम है हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा। शाम 6:20 पर सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम गोधुली। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत माधुरी का प्रसारण होगा। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल लेकर हम उपस्थित होंगे। इसमें स्किल इंडिया मिशन और प्राकृतिक आपदाएं, क्या बदल रहा है पर्यावरण संतुलन, इस विषय पर होगी चर्चा। साथ ही साथ मक्के की खेती से लाभ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में होगी चर्चाएं। श्री अन्न के बारे में भी होगी चर्चा। इसके अलावा आप सुनेंगे स्मार्ट कृषि और रोज की तरह मंडी भाव और मौसम संबंधित कृषि परामर्श आपको दिए जाएंगे। रात 8 बजे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिलने वाले कमेंट्स के आधार पर होगी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए शाम 5 बजे से पहले हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने कमेंट्स कर दें। रात 9:15 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम। रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का रात्रिकालीन भाग लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम राग प्रधान। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का हो

का प्रसारण, और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये हैं आज के हमारे शेष आकर्षण। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा मीडियम वेव पर यहीं समाप्त होती है। आपको बता दें FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम

के 5 बज रहे हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आगाज का। आइए सभा की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नवाडी टुकुडाण पेंडारी बूढ़ाडाण कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये सकालो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार सायर ससकालो सत्तीमुड़ा शिवनाथपुर घासीडी बोड़ाझरिया ढोड़ा गांव दांतीढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा घोड़ा घाट नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 104 है। ये लोटान पुरुंगा बनहर सिंघीछा बेहरामार इंचपारा कंचीरा कोयलार सागरपुर ससकोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर आमा टिकरा नवापारा मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया जुनवानी कशडोल राट रोड झिंगोल नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तेंदुचुआ कोठारी रामपुर अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत

0: घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। कल दिनांक 20/6/2026 दिन शनिवार सुबह 10:30 से 11 के बीच कार्यक्रम घर आंगन के अंतर्गत श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम फ़ोन इन बात करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग की जाएगी। विषय होगा विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योगा दिवस। श्रोता बहनें फ़ोन लगा सकती हैं इस नंबर पर 231-917 और 231-918।

0: 11 बजे के बीच कार्यक्रम घर आंगन के अंतर्गत श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम फोन इन बात करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग की जाएगी। विषय होगा विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योगा दिवस। श्रोता बहनें फोन लगा सकती हैं इस नंबर पर 231-917 और 231-918। नंबर लगाने से पूर्व हमारा कोड जरूर डायल करें जो है 07774। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम 5:10 होने को हैं। अब आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। जैसे आकाशवाणी के
1: चलते हैं जहाँ से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, there are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो। इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक

0: नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों। और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: आती है। पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट let the this prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no, rozgar ya karobar साथ है
0: भारत सरकार जी। और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है। बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली।

0: पहुंच जाएगा, कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: ना? एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across

0: across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है
0: इट्स फुल नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स दे ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर
1: An amount will be transferred.
0: Yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees and the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold provided they are retained for at least 6 months and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors however to heavily support the manufacturing sector businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years.

0: this. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुन्नानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job, and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming. You know, I'm sure I'm going to come up, and I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The union minister, he'll give the welcome address, and then the prime minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech, because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country, and so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण

0: Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meagre amount, some may get very meagre amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बोके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar
2: zordaar taaliyan ho jaye. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत

0: नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome
0: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: By श्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए इस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का एक नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी

0: मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

0: इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
5: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
6: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
7: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी,

देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम

नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए।

बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है।

हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक, अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा

क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का।
हमारी सो

सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है, पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है।
भारत के उद्योग

0: जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.

0: minister,
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री,
0: फुल स्ट्रेस ऑन द यूथ ऑफ द कंट्री एंड ही सेज दैट दे आर द फ्यूचर पिलर्स ऑफ आवर कंट्री एंड द कंट्री रेस्ट्स ऑन देयर शोल्डर्स. दैट्स व्हाई ही हैज बीन पुटिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ एंड ही सेड that their
1: प्रधानमंत्री जी
0: is what
1: आपके इन प्रेरणादायी शब्दों ने आज यहाँ उपस्थित हर
0: फुलफिलमेंट ऑफ योर
1: ड्रीम्स नया गौरव दिया है.
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है. और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू. और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं. इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ. नमस्कार.
3: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू.
4: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ. यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
5: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees.

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

कार्यक्रम माधुरी में अभी आप सुन रहे थे दहक फिल्म का ये गीत। आवाज थी हरिहरन एवं साधना सरगम की। संगीत निर्देशन था आदेश श्रीवास्तव का और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। आवाज़ है कुमार सानू एवं कविता कृष्णमूर्ति की। संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम माधुरी बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट

0: और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रवेश की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नियद निल्लानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण

0: के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली में वरिष्ठ नागरिकों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी तथा उनसे संवाद किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीकरण और जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इधर नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। महाराष्ट्र के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 20 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 10 हाईवा को जब्त किया है। उधर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने मिंगाचल नदी में बीती देर रात छापा मारकर रेत उत्खनन कर रहे JCB, पोकलेन मशीन और 4 वाहनों को पकड़ा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। उधर रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के चिरई पानी में कल रात दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान दो उद्योगों के बीच बनी एक दीवार अचानक गिर गई, जिससे पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे कुछ मजदूर उसकी चपेट में आ गए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 जुलाई तक चलेगी। चयनित बच्चों को राज्य के निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से हज यात्रा के लिए सऊदी अरब गए 122 हज यात्रियों का पहला जत्था नागपुर पहुँच गया है। नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। और बालोद पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 टैंकर, मोबाइल फोन, खाली गैलन और 40,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी शनिवार के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

कल रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। गायन स्वर होगा विवेक कमारहे का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:00। शाम 7:20 पर आप सुन सकेंगे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:05 पर वक्त होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गोधूली एवं गूंजे जंगल आप सुन सकेंगे प्रातः 7:00 एवं शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। गैर फिल्मी

एवं फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर। हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे 2:40 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा 2:10 पर। कार्यक्रम खेती की बात एवं खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:45 एवं 1:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुन सकेंगे 12:00। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे 11:05 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण समय होगा 9:15 पर। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम बातों बातों में का प्रसारण समय होगा 9:00। 8:30 पर आप सुन सकेंगे डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे 7:30 पर।

तो ये थे कल यानी शनिवार को हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है कार्यक्रम मनभावन, रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे। रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:00। हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8:00 वक्त होगा सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का। और शाम 7:20 पर आप सुन सकेंगे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में अभी आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज़ में ये गज़ल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल। शब्द रचना है वल्ली अस्सी के।

कार्यक्रम रजनीगंधा की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। संगीत निर्देशन है वासु चक्रवर्ती का और गीतकार हैं मजरूह।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप ये गज़ल सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनवैया जम किसान भैया बहनी मन के राम राम। किसान भैया बहनी हो, देखिए दे भाई कहब तो अभी कर समय में दे आज कर अगर विशेष बात करी नहीं तो घड़र घुड़ूर कर संग संग नगद दे दे बरखा पानी हमर अंबिकापुर में होई से। आऊ देखी तो कहब नहीं तो बिजली मन भी चमकिन है। आऊ नगद भाई कहब तो एक धक्का तो ऐसे करिस नहीं कि गदगद आए के बरखा पानी हर हो जा। अब दे तैयारी में हमन भेंट जाब। बाकी देखी चटिक डरवाइस। आऊ भाई कहब तो एको घंटा तो बढ़िया बरसीस लेकिन चटिक आऊ देखिए दे अगोरा रहीस कि बढ़िया एदे हो ही। बाकी वो हिसाब से तो चटिक नहीं होइस लेकिन भाई फिर भी देखिए दे भाई चटिक मटी के दे होत रही तो हमर काम बुताहर खेती पाती कर उसरत रही आऊ एदे होत रही। तो इसने हमरे देखी भाई इंतजार करत ही कि बढ़िया बरखा पानी हर होए। बाकी देखिए दे हमरे भाई यदि धान के छोड़ के डाँड मधे खेती अगर करना चाहते ही नहीं तो हिसाब से दे भाई दे दही से हाल बन गई से। और यदि मक्का कर खेती यदि करना चाहता है नहीं जोड़ी कर ते मन यदि भाई बढ़िया जे यदि उसरा सकता है काबर की ओकर हिसाब से हाल हर बन सकता है। तो बढ़िया यदि भाई अपन तैयारी ला रखी काबर की बरखा पानी कर मौसम हर बनता है। आऊ कबो देखिए यदि भाई बढ़िया बरखा पानी हो सकता है तो हिसाब से हमार तैयारी मन होना चाहिए। और तैयारी कर बात अगर है नहीं तो एक बात कर सूरता आऊ आएगी देखिए दे कहता है कि भाई सुघर कन हमार

देखिए दे सरकार चलात है योजना और वो योजना में एगो मिशन है और जेकर नाम है स्किल इंडिया मिशन। कथे दे हुनर से रोजगार, काबर की देखी भाई हमरे ऐसे है नहीं कि अभी कर समय में हमर जग जो पढ़ाई लिखाई कर डिग्री है ओकरे से देखी काम बूता भेटाए जाही वह जरूरी नहीं है। तो हमर हाथ में कोई न कोई अगर हुनर है तो ओहर देखी हमर बर एगो रोजगार कर बढ़िया साधन खोल दे है। आउ वही प्रयास है हमर सरकार कर ये मिशन कर माध्यम से कि हमर हाथ में अगर हुनर है तो हमर जग रोजगार कहों न कहों ले आए जाही। तो अभी जरूरी है कि हमरे कोई न कोई हुनर से अपन आपला जरूर परिचय कराई। और स्किल इंडिया मिशन कर उद्देश्य यही है कि देश कर जो युवा मन है तेमन भाई उद्योग कर जो जरूरत है ओकर हिसाब से प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण लेह कर सुविधा भी हमर सरकार हमला देही से कई जगह पर देखिए दे व्यवहारिक कौशल पर देखिए दे कौशल विकास कर जो प्रशिक्षण है ते मने दे होवत रथे और ओकर सूचना घलो आत रहेल। तो हमला भाई जुड़ना है और अपन अंदर एगो कोई न कोई कौशल जरूर विकसित करना है और सीखना है। काबर की देखी हमर जो देश है नहीं भारत देश सर तेहर देखी पूरा दुनिया में सबले युवा देश मन में एगो है। अब अगर युवा शक्ति ला सही दिशा और बढ़िया प्रशिक्षण अगर भेटाया जाता है नहीं तो हर देश ला केतरा आर्थिक विकास में अपन मदद कर सकता है ओला बढ़ाए सकता है तेला हमरे अपन आप में जान थी। तो स्किल इंडिया मिशन यही सोच के साकार करे कर एगो सरकार के माध्यम से प्रयास है और एक अंतर्गत जो हमारे युवा शक्ति है तेमन ला आधुनिक तकनीक नया नया कार्य कौशल तरह तरह कर संचार कौशल और जो उद्यमिता है तेकर विकास कर प्रशिक्षण देहल जाए। ये मिशन कर प्रमुख योजना मन है जेमन में हमरे ये दे भाई जुड़ के बढ़िया ये दे प्रमाण पत्र भाई पाए सकत ही और वो प्रमाण पत्र ला दिखाए के हमरे बताए सकत ही कोई झनला कि हमरे ऐसे नौ सीखिया नहीं ही बढ़िया सीखे ही हमन प्रशिक्षण ले ही और बढ़िया हुनर कर काम कर सकत ही तो रोजगार कर औसत हमला भेटा सकेल। और प्रशिक्षण अगर हमरे पूरा कर ले थी तो ओकर बाद देखी जो प्रशिक्षण कर कहीं नहीं मूल्यांकन होल और वो मूल्यांकन कर माध्यम से मैं जे भाई ये प्रमाण पत्र कर बात कहें वह हर भेटाएल आऊ भाई ओकर माध्यम से हमरे रोजगार कर सकत ही या ओकर माध्यम से देखी कहीं नहीं तो हमला बैंक कर माध्यम से सहयोग भी मिल जाए आर्थिक सहायता भी मिल जाए कि हमरे अपन रोजगार ला नवा तरीका से शुरू कर सकत ही। तो अगर हमरे ऐसे सोचते ही नहीं कि हमला काम बूता नहीं भेटाता है तो भाई अपन अंदर हमला ये जो हमर स्किल इंडिया मिशन है ओकर माध्यम से कोई न कोई हुनर जरूर सीखना है। काबर की प्रतिस्पर्धा हर बाढ़ी से और बाढ़ी से तो काम बूता चटिक भाई हमन सोच थी कि नहीं भेटा आता है हमन ला तो एक उपाय हमर एक सुघर उपाय है कि हमन के अपन अंदर एक कौशल जरूर विकसित करना चाहिए और वो कौशल कर माध्यम से रोजगार हमन ला जरूर अपनाना चाहिए। देखी काबर की हमर हाथ में अगर भाई कौशल रही तो रोजगार हमन ला जरूर भेटाए जाही। तो यह देखी सुघर बात है। बाकी ओकरे संग संग एगो देखी सूरता आएगी इसकी देखी कॉल कर जो तारीख है नहीं तेहर विशेष है। काबर विशेष है कि देखी हमर जो प्रधानमंत्री हैं ते जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिला हमरे पीएम किसान सम्मान निधि का नाम से जानती तेकर जो 23वां किस्त है तेहर ये दे कल भेटा ही हमर प्रधानमंत्री जी 20 तारीख के कहब तो कायल जो तारकेश्वर है हुगली पश्चिम बंगाल वहाँ ले कर ही और हमर खाता में जो पैसा आही ओहर भाई किसान सम्मान निधि कर पैसा है तेला हमला जानना है। तो जरूर भाई अगोरा राउर मन के हो ही कि भाई ये हर बीच बीच में हमर जग जरूर आयल और देखी एकर सूचना पहुँच गई से कि कायल एहर हमर खाता में पहुँचे वाला है। तो राउर भाई देखी राउर जो सम्मान है किसान मन कर सम्मान है वो राशि हर हमर मदद पर भेटाएल और एकर ले बढ़िया समय का हो सकेल कि इते बरखा पानी कर गिरना हर शुरू होत है और उधर देखी हमर प्रधानमंत्री हमर सहयोग पर खेती पाती कर काम में सहयोग पर देखी किसान सम्मान निधि राशि जारी करे वाला है काल कहब तो 20 जून 2026 के। अब देखी खेती पाती कर सुरता आते ही नहीं देखी यदि भाई कहब तो बरखा पानी गिर गिस तो मैं कहत रहन कि सुघर कने को हमर जग गीत है
गिर गे बरखा पानी। तो लगी ये गीत ला सुनत ही प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संगता मन गाइन है।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान

0: आयुष्मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश सुनेन और संदेश ले पहले सुनेन गिर गए बरखा पानी भैया आइस गा किसानी गीत प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संतामनकर गायल झमाझम गीत। बाकी किसान भैया बहनी हो देखी अजेकर समय हमर बर कहब नहीं तो ये दे छत बदाय जही काम काबर की बरखा पानी गिरीस ओकर बाद हमरे किसान देखिए दे भाई नांगर कहब तो जुआ कहब तो पैना कहब तो खेत कहब तो आर छाटना कहब तो बीज व्यवस्था तो खाद व्यवस्था देखी सब में दे अरझा जात। ऐसे में भाई देखी जरूरी है कि अपन भाई बढ़िया काम बूता ला भाई समय कर हिसाब से करी काबर की खेती करना ले भी बड़े बात है समय ऊपर खेती करना काबर की अगर हमरे समय ऊपर करत ही नहीं तबे लाभ हर भेटा सकेल नहीं तो भाई गड़बड़ा जा ही देखिए दे पछेती हो जाए तो कहीं चीज हर दे भाई बढ़िया बाद में भाव भी नहीं भेटाएल और नुकसान हो जाए। बाकी देखी गोठ बात कर संग संग जब गीत सुनत रहन तो सुरता आई इसकी एक बात जरूर मैं आज अपन सुनवैया भैया बहनी मन कर साथ जरूर करूँ और वो बात है देखी हमरे अगर ये सोची कि देखिए दे प्राकृतिक जितना आपदा हैं तो एमन काबर आत हैं का पर्यावरण कर जो हमर संतुलन है तेहर बगड़त है ओकर चाड़ू आता है तो ये ला सोचना जरूर है हमला काबर की देखी किसान भैया बहनी हो देखिए दे हमर जो आए वाला भविष्य हैं आए वाला जो हमर पीढ़ी कर लड़का मन है तेमन ला हमन ला बढ़िया सुघर पर्यावरण देना है आउ गोट बात काबर शुरू करे नझे काबर की एकर ले बढ़िया समय आउ काही नहीं हो सके पौधा लगाए कर रूख लगाए कर और पौधा ला अगर अझे लगात ही नहीं तो बढ़िया वाला देखी पानी भेटाता है और पानी भेटाए कर बाद देखी ओहर जो बाढ़ ही नहीं एक साल में तेकर देखी सेवा सत्कार कर जरूरत नहीं पड़े वाला अपने आप बाढ़ जाही अझे चटी खमला देखना है कि भाई ये दे बढ़िया पानी भेटाता है बस घोरना कर देना है और छेरी पठरू मन ले चटिक बचाना है कि ये दे चैर झन दे नहीं तो यदि चैर देते हैं पतई मन लाता है चट तेकर खत्म और ख़त्म होगी तो तीहा जतन हर जरूरी है काबर काबर की हमर पर्यावरण हर बगड़त है और बगड़त है तो ओकरे चाड़ू जो मैं प्राकृतिक आपदा मन ला कहें ते मन आता है चाहे बाढ़ कह ली चाहे देखिए दे भाई झूरा झूरा अकाल जला हमरे कथी ते कहली चाहे देखी हमर तरफ तो नहीं लेकिन दूसर दूसर तरफ देखिए दे भाई भूस्खलन कथे तेमन भी होते हैं तो एकस जो है नहीं आने आने प्रकार कर भाई हमर तरफ तो भाई कम है देखिए दे झूरा हो जाए ते बात है बरखानी हो ते एगो समस्या हो जाए प्राकृतिक आपदा में एगो भूकंप और कबो कबो दे भेटाए जाए हमर तरफ आउ कही तो भाई एकस नहीं आए दे भूस्खलन हमर तरफ नहीं है। बाकी देखी ये बात है कि ये सब जाथर जुड़ी से कहीं ना कहीं चाहे सूखा कर बात कर ली चाहे भूस्खलन कर बात कर ली एक चीज़ आऊ हमर तरफ हो दे जंगल में आगी लगना तो ये प्राकृतिक आपदा मन कहीं ना कहीं हमर जो काम बूता है हमर जो जीवन शैली है जेमन बदलिन है और हमरे चटिक सुकुवार हो गए ही आउ जो विनाश करत ही हमरे रूख राई कर जंगल कर आउ पर्यावरण कला खराब करत ही अपन जीवन शैली से चाहे वो कचरा बगराए के करी चाहे मोटर गाड़ी कर उपयोग करके करी चाहे साग भाजी लेहे बर जब जाती तो हमर जग झोला नहीं रहे तेहू हर कहीं ना कहीं पर्यावरण नुकसान करे कर प्रयास है हमर तरफ से तो जरूर बाँच ना है एकर से काबर की जब हमरे दे साग भाजी ले जाती तो देखी राउर जात ही नहीं तो ये दे बेचे वाला मन भी अपन तरफ से ये दे जलपोस देते प्लास्टिक देते तो हमन ला वही समय कहना है नहीं मैं झोला धैर के आए हूँ तो कहो ना कहो ओकर मन में भी आई कि भाई यह दे जानता है समस्या ला और वो भी चटिक जागरूक हो ही और अपन से जुड़ल मनसे मन ला जागरूक करे कर प्रयास करी तो छोटे छोटे पहल से जो प्राकृतिक आपदा मन होता है ओकर सबले बढ़िया उपाय ये है कम होकर कि हमरे अपन पर्यावरण ला सुघर बनाए कर प्रयास अपन स्तर से जरूर करी। अब वो मैं देखी दुई तीन चीज है कि देखिए दे कम ले कम हमरे मोटर गाड़ी कर उपयोग करी और अभी कर हिसाब से बगरा ले बगरा पौधा लगाई ओकर से एक साल दू साल तीन साल चार साल बाद जे रुख मन तैयार हो ही ना ओकर बाद हमर पर्यावरण हर बढ़िया हो सकेल तो जरूर हमन ला अपन तरफ से कोशिश करना है अब एकर फायदा आए

वाला समय में हमार जो पीढ़ी है आए वाला पीढ़ी है तेल इरका मन जरूर देखी, नहीं तो कहीं कि हमार बाबा पुरखा ऐसे दे बिगाड़ के गई है पर्यावरण लाना कि जीना मुश्किल होगी से, तो एक समल्ला नहीं करना है और जरूर बचाए के रखना है। बाकी एक बात और कहूँ कि देखी अजय मैं गोट करत रहन कि कायल 20 जून के हमार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तेहर आए वाला है और इला हमारे जानत ही ये हमार सुघरकन योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जेमे किसान भैया बहनी मनला एक साल में 6,000 रुपया 2,000 रुपया कर 3 किस्त भेटायल, ओमे ले एक किस्त कल 20 जून के भेटाय वाला है प्रधानमंत्री जी कर माध्यम से, तेला भाई जरूर अगोरा करी और देखी भाई कि राउर खाता में आता है कि नहीं आता है, तो एला जरूर इंतजार करी और राउर जम झन एकर बारे में जान थी कि हमारे सुघर कन योजना है और सही समय पर ये योजना है हमला भाई ये दे योजना कर राशि हर हमर खाता में दे आए वाला है, काबर कि अजय बीज कर बात करी कि ये दे भाई खेती पाती कर तैयारी कर बात करी कि खाद कर बात करी, देखी अगर हमर जग चट्टी कम हो जाए नहीं तो हमर खेती पाती में ओकर प्रभाव हर पड़ेल, और सही समय में अगर भेटाया जाता है नहीं 2 पैसा तो नगद दे दे भाई सहायता हो जाए, तो वो सहायता कल होए वाला है तो जरूर राउर मन देखी भाई खाता ला जरूर देखत रहा। बाकी देखिए दे ऐसे है कि हमरे कोई न कोई किसान भैया जाए के गोट बात करती सुगर गोट बात करती अच्छा खेती पाती करता है तो राउर मनला भी सुनवा थी, अब अगर एको को फायदा कर बात हो जाता है तो उम्मीद है कि राउर मन अपनाए के अपन खेती माती में भी फायदा बढ़ाए सकत ही, तो यही क्रम में स्मार्ट कृषि क्रम है हमर जगह आज और ये में हमरे गोट करे ही मनोज पैकरा हैं ग्राम करौटी खुटरा पारा कर और इनकर से एक गर्मी में सुघर धान कर खेती करे रहिन और बढ़िया लाभ कमाइन है, तो लगी गोट बातला सुना थी।

0: किसान भैया बहनी हो, देखिए दे आज मैं निकले रहन आ बुले बर आ दे उदयपुर क्षेत्र में आए गए हों। अब गांव ला तो नहीं जानत हों, और यहाँ दे किसान एगो भेटाइन हैं, तो गांव ला भी जानबो और उनकर से गोट बात करबो और पूछबो कि भाई का काम बूता करते हैं। तो पहले तो नाम और गाँव ला बताते हैं।
1: तो भैया मोर नाम है मनोज कुमार पैकरा और मैं ग्राम करौंदी खुंटरा पारा में रहता हूँ।
0: हाँ
1: हाँ, तो अभी जैसे कि हमार गर्मी के सीजन में हमार छोटे धान लगा था, जैसे कि पूर्णिमा होइस, आईआर, आईटी होइस, ये माला अभी लगाए रहें, ज़्यादा तो नहीं लगा रहें, खाड़ी अकन की लगाए रहें। तो कैदा अभी उड़ के हमन काट के अभी रखे हैं, मिसाई उसाई नहीं करे हैं।
0: हाँ।
1: काबर के अभी पानी बादल ला देख के रुके हमन, तो कैदा यहर जैसे बादल है फरी होही देकर रोका अभी कोठार उठार छाबा ली कब देकर रोके मिसाई करब।
0: और ये तो देखा दे गर्मी कर बात होगी नहीं।
1: हाँ।
0: बाकी अगर बरखा मधे खेती कर बात करी और हमर सरगुजा में दे बगरा मइनसे मन दे बरखा मधे ही करते है नहीं, तो राउर भी करत हो?
1: हाँ करथन, ज्यादा कैदा खेती बाड़ी हमारे नहीं है।
0: हाँ।
1: जैसे एक डेढ़ एकड़ दो एकड़ के है जमीन। तो आप कैदा लगा था तो खाएज भेरक लगा था, बेचे उचे के कैदा अभी नहीं है हमारे जग ज्यादा ऐसा।
0: तो का लगा था बरखा के समय में?
1: बरखा के समय में कैदा खेती बाड़ी धान उन लगा था, तो जैसे गोरखनाथ हुई, सोनम हुई खाए बा। हाँ, तो यही माला लगा था खाएबर।
0: हाँ,
1: आई आर हुई।
0: हाँ,
1: आर छत्तीस।
0: हाँ, घर कै जन होता?
1: हमान आठ जन।
0: हाँ,
1: तो
0: भाई खाएबर हो जाए?
1: खाएबर हो जाती।
0: तो लड़का मन पढ़ते हैं कि राउर काम बूता में भी सहयोग करते हैं?
1: अभी कैदा हम और लड़का छोटे छोटे हैं।
0: हाँ,
1: ये जैसे कि 9 साल 7 साल इसे दो लड़के हैं मोर।
0: हाँ,
1: तो अभी वहाँ वही चौथी पांचवी पढ़ाते हैं कैदा।
0: हाँ, तब खेती पाती में का
1: उमन कर? हाँ, अभी काम उमन कैदा नहीं कराते हैं।
0: है नहीं।
1: हाँ,
0: तो तैयारी ला चटिक बताते हैं कि जैसे राउर अभी तो गर्मी देखिए दे टूट रहा।

0: है बरखा गिर ही कहत है हालू तो तैयारी मन ला अभी कैसे करत ही बरखा कर समय कर खेती कर हिसाब से
1: तो कैदा अभी पानी उनी थोड़ा मोड़ा अभी गिर ही जोते लाई तो कैदा जोत कर के रखे रहा गोबर उबर कैदा निकाल के वहाँ बगराए रहा ओ तो फिर तनिक जैसे बढ़ी पानी हा तो एको कोनहारा थारी थारा करे बर कैदा जोताई कोड़ाई हो ही
0: है नहीं
1: हो
0: अच्छा ये तैयारी तो मान ला छे देखिए एक बह करना भी पड़ेल कथे कम से कम नहीं
1: हाँ।
0: तो कर धारे ही की करब
1: तो अभी कैदा नहीं कर पा रहे हैं अभी तो वही फसल ला काटे हवन
0: अच्छा गर्मी में थे
1: हाँ।
0: हाँ।
1: तो अब पानी गिरे बिगर के हो नहीं जोतावत है
0: हाँ तो भाई ये दे कड़कड़ाएगी से
1: कड़कड़ाएगी से फाइट गई से कैदा
0: हाँ नगदे गर्मी पड़ी से
1: नगदे गर्मी पड़ी से
0: हाँ तो तैयारी मान ला भाई एक बार हो जाही तेकर गोबर कहा था राउर
1: हाँ।
0: तो गोबरे में काम हो जाए कि अंग्रेजी दवाई मधे भी डालता है खातू मान ला
1: डालना पड़ेल काबर की अब पहले रही तो होत रही जैसा होत रही गोबर खाद से लेकिन अब कैदा अब नया नया किस्म के दवा गोली आ गई है तो गोबर खाद में तनिक मन नहीं पड़े
0: हाँ।
1: नहीं
0: हाँ।
1: तो कैदा इको सिको यूरिया सूरिया लगाने पड़े
0: हाँ
1: हाँ
0: तो कितना डालना है तेला कैसे समझ पा रही कि कितना जगह तो, में चाहे कौन फसल में
1: तो जैसे कि 10-15 तामी क्या है
0: हाँ।
1: तो में तनिक तनिक 6-7 किलो 8 किलो ऐसे तनिक पातर पातर जैसे थरहा उरहा करत रहन ते समय बूंद देत
0: हाँ।
1: तो और फिर जामे के बाद जैसे तैयार होए बर हमला तैयारी करना है तो जैसे कि 4-5 दिन में हमला वाला नींदना है वो थरहा ला तो 4-5 दिन के पहले हमें हमन यूरिया मार देत हन तो कैदा अभी कह दो जैसे गर्मी सीजन के हर है तो तुम्हार 1.5-2 महीना में होते और वहाँ है तो थोड़ा सा जल्दी झोंकेल 15-20 दिन 1.5 महीना 1 महीना में इसे हो जाते 1.5 महीना में
0: हाँ।
1: ओ
0: तो तैयारी फिर देखी रोपा कर भी चिखला भी करना पड़त हो
1: करना पड़े
0: लेकिन अगर मान ली राउर तरफ है दे बरखा नहीं हुई बढ़िया तो ओकस में कैसे करब
1: तो बरखा नहीं हुई तो कैदा अब अकाले पर ही
0: तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं बना है
1: सिंचाई की व्यवस्था पानी जैसे कि आए जाते
0: हाँ।
1: एको दी पानी आवत है हाँ। बलहानी भरऊ
0: हाँ।
1: तो कैदा पूरा जुगाड़ हो जाही जैसे
0: हाँ।
1: हमारे बंधवा भर जाते
0: हाँ।
1: तो व्यवस्था हो जाही
0: हाँ काबर की देखिए दे राउर तरफ मित्रंगा पहाड़ी और वहाँ ले हिंकले ले दे नदी रेड़ ना हाँ तो भाई राउर तरफ नहीं बही से रेड़
1: नहीं बही से है जैसे हमारे जगह वो थे रिखी बांध कर थे तुम्हारे उदयपुर ले कुछ 10-15 किलोमीटर के आगे में है तो बंधवा हर हमार जैसे हमार करुंदी नमना ये सब जला थोड़ा थोड़ा नुनेरा हुई ये मतलब पोस देती
0: है ना
1: हाँ
0: थोड़ा थोड़ा करके पुराइस दे
1: पुराई देते हाँ।
0: है नहीं
1: हाँ।
0: देखिए जे आजकल न चटिक नवा लड़का मन है नहीं
1: हाँ।
0: ते मन खेती पाती तरफ दे जाना नहीं पसंद करते
1: नहीं पसंद करते
0: तो राउर देखिए किसान ही और घर चला थी खेती पाती ले तो नवा लड़का मन ला अपन तरफ से का सलाह दे कि खेती पाती तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अब आना चाहिए तो काबर का सोचती राउर
1: हमारे विचार तो कि देखा हमन ला स्कूल तीला भी पढ़ाना है
0: हाँ।
1: काबर की अपन ला ज्ञान और देना है,
0: हाँ।
1: है?
0: हाँ।
1: और अभी हमार बाजार रहत ले तो कैदा खेती बाड़ी हम ही देखब
0: हाँ।
1: लेकिन थोड़ा मोड़ा जो भी है चलाओ तेला करवाबो
0: हाँ और देखी सब्जी भाजी में चटिक बताते हैं कि वही तरफ जाती कि धान में ही रह जाती
1: नहीं साग सब्जी लगाती
0: का लगाती
1: तो देखा भिंडी भी जैसे बारी बुनाई होएल तो वो समय में हम भिंडी लगा बुन देते वही में मकई बुन देथन बेहतरी बुन देथन खीरा बुन देथन
0: हाँ।
1: कैदा लगभग थोड़ा थोड़ा सब कुछ ला वही में ढकेल देथन बारिये में
0: हाँ।
1: तो साग सब्जी बरखा समय हो जाते
0: देखिए दे जगह और कम रहल नहीं
1: हाँ, हाँ।
0: तो भाई ये दे उपाय भी तो निकालना पड़ेगा
1: निकालना पड़ेगा हाँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ। तो राउर उपाय निकालती कि एक धार भाई ढकेल देना है जहर हो सकेल
1: हो सकेल हाँ,
0: है नहीं
1: हाँ।
0: बाकी देखिए उत्पादन ला बताई कि भाई राउर संतोष हो जाएल कि
1: तो जैसे बारी में अब छोटे एक बारी है
0: हाँ।
1: अब वो में हम सब ढकेल अब तो जहर हो ही त्यार हो ही सब हथोरी हो ही काहे कि जैसे अजय हम धान बुने हैं और धान में ज्यादा बंद उपजाऊ हो जाए तो हमारे धान तो तरिए जाही यही टाइप के मतलब जहर ऊपर आए जाते तेहर फल दे देते
0: हाँ।
1: और तरिया आएगी तेहर तरिए ही रहते तो हमारा संतोष करने पड़ी नहीं नहीं हुई तो का करे बोला
0: बाकी घर हर चलता है बढ़िया
1: चलता है
0: लगी तो देखिए राउर सुगर गोट बात करें ना वो देखिए बढ़िया है दे कमाई खाई
1: हाँ।
0: और चट्टी के नवा तौर तरीका से खेती पाती करके सुगर कमाई हमरे भाई यही कहा थी
1: हाँ।
0: तो राउर गोट बात करें राउर के बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जय राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ देखी भाई, सुगर गोट बात सुनें, एदे स्मार्ट कृषि क्रम में हमर बीच एदे गोट बात करत रहीन मनोज पैकरा, खुटरा पारा उदयपुर क्षेत्र करे किसान रहीन, और गर्मी में धान और बाकी जम जात कर खेती समय समय पर एकर के लाभ कमात रहीन। अब देखी भाई, एदे एक बात आउआ है कि अभी कर जो समय है गोठ जहाँ ले मैं शुरू करे रहन, देखी वहाँ फिर आत हूँ, काबर कि अभी जो बरखा पानी हुई सा है नहीं, एक दो दिन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देखी भाई बरखा पानी है, कहूँ आज है कहूँ कल रहीस, और भाई ओकस में देखी हमर जो जमीन है जहाँ हमरे खेती करना चाहती, देखी अभी कर हिसाब से अगर कहीं नहीं तो मक्का कहीं तो जोड़ी सुघर एदे फसल हो सकता है अगर हमरे इला लगा सकत ही, तो अभी ओकर बढ़िया समय है। और ऐसे है नहीं कि देखी बरखा पानी हर अगर गड़बड़ायल नहीं तो वो समय देखी एदे भाई संहारे बर काही खेती है तो वह है जोड़ी, काबर कि यह देखिए यदि कम पानी में भी बढ़िया उपज हो जाए। और हमर जो क्षेत्र है विशेष रूप से सरगुजा नहीं नगद क्षेत्रफल में मक्का कर खेती जोड़ी कर खेती यदि होल और बढ़िया यहर संहार दिल, कबो कबो ऐसे हो जाए नहीं कि यदि भाई ऊपर देखाऊ हो जाए कि कब गिर ही यदि बरखा हर, अब ऐसे में देखी हमर जो जोड़ी है नहीं तेहर एदे सुघर संहार दिल। आउ जैसे समय अगर पूरी सोकर बाद सरगुजा में राउ एदे हिकल जाए बुले बर नहीं तो दूरा दूरा में कहब तो एदे कुढ़ाए रथे, काबर कि यह भाई बढ़िया फसल है हमला संहारेल और धीरे धीरे एकर मांग भी बढ़ता है। और ओकर हिसाब से भाई अगर ये पानी कम मांगता है और हमर जो जलवायु परिवर्तन होता है हमर जो बरखा पानी कर जो समय हर देखी गड़बड़ाता है, इस स्थिति में कहब तो किसान भैया बहनी मन बर यह बहुत सुघर विकल्प कर रूप में हमर सामने आ जाए। और खेत में अगर भाई बढ़िया एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी निकासी कर सुघर व्यवस्था हो तबे यदि भाई मकई कर जोड़ी कर खेती हर यदि बढ़िया हो सके। और संग संग एक बात कर और तिहा करना चाहिए वो है देखी भाई उर्वरक प्रबंधन। अब अगर हमरे अभी जो समय हमर जग रही थे में अगर हमरे माटी परीक्षण कराए हो नहीं तो हमला उर्वरक प्रबंधन कर बारे में जानकारी भी मिल गई सोही कि कितना मात्रा में कौन सा खाद कर जरूरत आहाय हमर जमीन ला हमर खेत ला, तो हिसाब से भी राउर देखी उर्वरक प्रबंधन करके भी खेती पाती कर सकते ही। एक बात कर आऊ तिहा करना है कि भाई देखी कहब नहीं तो समय ऊपर खरपतवार प्रबंधन जरूर करना चाहिए अगर हमरे जोड़ी कर खेती करत ही, तो काबर कि ओहर देखी ऐसे डाहल नहीं कि कहब तो 50% तक हमर देखी नुकसान हो जाए अगर हमरे खरपतवार प्रबंधन अगर बढ़िया से नहीं कर पाएं तो। समय ऊपर देखिए दे चार अंगुर लेक बिता कर अगर हुआ था है हमर नहीं वो तो वो समय बढ़िया रहे देखी खरपतवार नियंत्रण करे कर, तो निंदई गुड़ई समय ऊपर होना चाहिए अगर ऐसे हमरे करत ही नहीं तो हमर मक्का कर खेती से हमरे बढ़िया लाभ कमा सकत ही। छोटे छोटे बात है जिला हमरे ध्यान देहत ही, तो नगद सेवा जतन नहीं खोजे।

जोड़ी कर खेती हर। देखिए पहला बात यह है कि समय ऊपर हाल रहते देखिए भाई ओकर बुआई हो जाना चाहिए, और देखिए पंक्ति से ओकर दूरी और पौधा से पौधा कर दूरी कर भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह पहली बात तो मैं कहें देखिए हाल हर जरूरी हो जाएगा, अगर कि नगद दे दे चिखला हो जाए ओकर बाद दे जोड़ी लगाबो नहीं तो नुकसान हो जाए सड़ जाए, तो ओकस में हाल ला जरूर देखी कि अगर बढ़िया हाल है तो जोड़ी लगाई। दूसर बात मैं कहें कि भाई देखिए दे कतार से कतार कर दूरी और देखिए दे पौधा से पौधा कर दूरी ला भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीसर बात मैं कहें कि जल निकास कर व्यवस्था भी जरूर देख के ही हमला जोड़ी कर खेती करना चाहिए। चौथा बात मैं कहें खरपतवार नियंत्रण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, समय ऊपर खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है। ओकर बात कर एक बात आऊँ मैं कहें वह है उर्वरक प्रबंधन, अगर हमारे इतरा ला कर लेता ही नहीं तो जोड़ी कर खेती में देखिए भाई नगद लाभ है अगर बढ़िया सब कुछ हो जाता है समय ऊपर। तो बाकी मैं कहत रहन कि देखिए अब चटिक बेरा बाँची सा है कम, तो एगो आओ गीत है काबर की बरखा पानी बढ़िया होता है और भाई किसानी करे कर ये समय आएगी से तो भाई हमन ए दे निकलत ही। आजकल सुबह उठते उठते देखी नांगर ए दे धैर के जुआ धैर के अपन ए दे कंधा में आओ ए दे खेती पाती करे बर जाती, तो भाई ओकर हिसाब करे सुघर कन गीत गुलाब सिंह पैकरा और उनकर संगता मनकर गायल।

नागर बैला धर चलोगा संगी हो गे है बिहान सुघर कन ये गीत। ओकर बाद देखी भाई नागर बैला कर संग संग एक चीज कराओ जतन करे कर जरूरत है ही काले कर जरूरत है आओ वह देखी भाई छाता छोपी खोमरा तो एला भी हमन लहरना है काबर की बरखा गिरना शुरू होगी से बाकी मंडी भाव कर अब गोठ कर बेरा है तो अंबिकापुर बाजारे राम तिल चलता है 7,000 रुपया प्रति कुंटल सरसों 5,600 रुपया प्रति कुंटल तिल 6,000 रुपया प्रति कुंटल और कोदो 3,250 रुपया प्रति कुंटल। उसने दे मौसम कर जानकारी कर गोट करी तो अभी देखी आज कर जो अधिकतम तापमान रहीस वो रहीस 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। काल कर अनुमानित है अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस कर और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस कर। बाकी बेरा हर एकदम होगी से अब कहता है कि आज कर चौपाल ला यही जग समेटल जाए तो आने दिन फिर भेंट हो ही चलल जाए। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश पे मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ है, माफ़ कीजिएगा, किशोर कुमार एवं अलीशा चेन्नई की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सुरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा।

मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सुरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, ग्राम पंचायत कौशलपुर रामानुजनगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुखराम सिंह मरावी, जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह एवं अंकित कुमार, जिला मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह, कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी ज्योति एवं ज्योति जानवी एवं दीक्षांत मिरी, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजाल, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई, विकास सिंह एवं ओम प्रकाश, दयानंद कॉलेज भवानी सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका वानी, आरव चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही एवं प्रियांशी सोनी, ग्राम कुंजनगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजे, महिमा देवांगन, श्रेया देवांगन, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद, हैप्पीपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता नितिन एवं वंशिका दिवाकर। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में मिस्टर आशिक फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं इंदिवर।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में मिस्टर आशिक का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा एवं राजकुमार बुड़ाना, ग्राम कसकेला पोस्ट सलका जनपद भैयाथान जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से शेष कुमार सिंह सेजल एवं साक्षी सिंह, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकीब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे एवं मोहम्मद हसनैन पवार, सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु, राहुल कुमार, वंदना, प्रियंका एवं आपके साथी, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन एवं अंकुश अरोड़ा, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोडके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री एवं यज्ञेश गोडके, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम श्याम रवि आर्यन रंजीत रामानंद कुशवाहा एवं साथी, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखीलाल वर्मा, अराड़ नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश एवं दीपेश वर्मा। कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है सरबजीत फिल्म से, आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है अमान मलिक का और गीतकार हैं रश्मि विराग।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का और गीतकार थे समीर। इस गीत के पहले आपने सुना था सरबजीत फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इन दोनों ही गीतों की मिलीजुली फरमाइश है हमारे पास। प्रस्तुतकर्ता के नाम हैं रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान एवं शेख हबीबुर रहमान, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी एवं हिमाक्ष, मुंडा टोला डोडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से

उमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश एवं माहिर नेताम, बरकाकाना से अफजाल, ताज, शाहिन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी एवं मोहम्मद अफजल, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज एवं पीयूष कुमार, ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति एवं शिवांश वर्मा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा एवं स्वीटी छाबड़ा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत, परदेश फिल्म से आवाज़ है कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

परदेस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, बाबा अनय, अनाया, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत फरमीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान, अबान, सुहान एवं परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज एवं बिट्टा बजाज, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश एवं शीतल राजेश, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलॉट जिला रतलाम एम मध्य प्रदेश से जगदीप, जगदीश धाकड़, नायमा, रंजू बाई एवं युवराज सिंह, बटीडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित एवं तानिया नारंग, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन एवं अपार ढिंगिया, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, सविता, स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं परिवार के सभी सदस्य, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा, पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन एवं राजेंद्र जी साह। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म का ये गीत विनोद राठौर एवं अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं गौहर कानपुरी।

0: अग्नि की आवाज में।
1: हमारे रख दे तो जल जाए हम।
0: इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी एवं दिशा गोस्वामी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर एवं मनु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किसु तासु अर्णव आनंद सत्यम, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत एवं गुड्डी भगत, गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका एवं वाणी थांदी, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नथावत धीरज सिंह सोलंकी सागर पवार भानु प्रताप सिंह पवार एवं परिवार के सभी सदस्य, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका अनिष्का एवं तन्मय गजभिये, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ एवं नीलोफर फातिमा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा प्रवीण, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश प्रज्ञेश एवं प्रीतेश। इसी के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या एवं इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता

0: सफलता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत

0: में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश

0: Smita Chaliha stormed into the women's single semi-finals in the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Hae-yoon in the semi-finals tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yoon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एकर तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना, मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर मानसून के आय के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। ए अभियान के तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना मन के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बताइन कि नियत निलरार योजना के सफलता ला आगो बढ़ात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिला में 31 योजना मन के संतृप्तिकरण सुनिश्चित करे जाही। उमन किहिन कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभाग के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था ले लोगन मन ला बेहतर सेवा उपलब्ध कराए जाही। मुख्यमंत्री है किहिन कि हरेक परिवार तक शासन की योजना पहुंचे ले ही विकसित छत्तीसगढ़ के सपना साकार होही। उमन बताइन कि ए अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवा ल शामिल करेगे है। मुख्यमंत्री है बताइन कि अभियान के क्रियान्वयन 3 चरण में करे जाही। पहली चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण करे जाही। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ा के आधार में संभावित परिवार मन के पहचान करके ए योजना पर बेसलाइन तैयार करे जाही। उन्हें दूसरिया चरण में ग्राम क्लस्टर और विकासखंड स्तर में विशेष संतृप्तिकरण शिविर रखे जाही। इस शिविर के माध्यम ले पात्र हितग्राही मल्ला योजना ले जोड़े जाही और जरूरी दस्तावेज और सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे जाही। तीसरैया और आखिरी चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम ले योजना मन के प्रगति के आकलन करे जाही। संग्रह जरूरत के अनुसार सुधार के कदम घलो उठाए जाही। केंद्र सरकार है किसान मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना, मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ा दे है। ये निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत ले गए है। कृषि मंत्री रामविचार नेतामहा प्रदेश के किसान मनला बाढ़े बेरा के फायदा उठाए और पास के सहकारी समिति में जाके अपन उपज बेचे के अपील करीन है। ओमन किहिन कि एकर ले किसान बाजार के उतार चढ़ाव ले बांछी और ओमनला फसल के उचित दाम मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करही। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

0: अलह बताइस कि देश भर में 94 करोड़ ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में सीधा 18,880 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि अंतरित करे जाही। एक किस्त ले 2,18,00,000 ले ज्यादा महिला किसान मन लघलो फायदा मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में प्रदेश भाजपा कोती ले विशेष जनसंपर्क अभियान चलाए जाथे। इही कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा मुंगेली में वरिष्ठ नागरिक मन ले सौजन्य भेंट करीन। ए दौरान श्री साहू हा केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्य और आने आने उपलब्धि के जानकारी दीन और ओमन ले गोटबात करीन। उन्हें गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में छायाचित्र प्रदर्शनी और पंजीकरण शिविर के आयोजन करेगी। इति रायपुर जिला के आरंग में रखे गए शिविर में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत सिंह साहब केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के जानकारी दिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऊपर केंद्रित रही। एक तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 20 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इतवार के होवैया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG के पुनर्परीक्षा में शामिल होवैया उम्मीदवार मन पर एक ठिन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA स्पष्ट करे है कि जम्मू आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उखर सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले भेजे जाहि। एजेंसी है उम्मीदवार मनला सलाह दे है कि NTA भेजे गए कोनो भी संदेश ऊपर भरोसा करे के पहली नीला सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाव के जांच कर लेवे। इही बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है नीट परीक्षा में शामिल होवैया परीक्षार्थी मन के सुविधा पर विशेष रेल सेवा के व्यवस्था करे है। रेलवे को तिले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के संचालन के 20 और 21 जून के करे जाही। इखर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग तक करेगे है। यात्री मन के अतिरिक्त भीड़ ल देखत 10 ठीन ट्रेन में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच घलो लगाए जाही। इति NEET UG के परीक्षा परिणाम और प्रदेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी मन में बढ़त मानसिक तनाव ल देखत बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान SIMS मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू करे है। ये सुविधा मनोरोग विभाग डहाल ले उपलब्ध कराए गए है। विद्यार्थी 18 जून ले 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 में तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया ले जुड़े समस्या पर विशेषज्ञ मन ले सलाह ले सकें। राज्य सरकार है संजय अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करे है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग डहाले इस संबंध में आदेश जारी कर दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री अग्रवाल ला नियुक्ति में बधाई दिन है। उमन कहिन कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री है भरोसा जताइन कि श्री अग्रवाल के अगुवाई में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता ला नवा गति मिली। इही बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित उखर निवास में सौजन्य भेंट करीन। इस दौरान योग के संवर्धन और प्रदेश में योग संबंधी गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए ले जुड़े विषय मन ऊपर चर्चा हुई। प्रदेश में रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण ऊपर सरलक कार्रवाई करे जाते। इही कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम है अवैध रेत परिवहन करत 10 ठीन हाईवा ला जब्ती करे है। SIMGA SDM बताइन कि SIMGA गरा जांच अभियान चलाए जात रही। इही दौरान गाड़ी मनला रोक के परिवहन पास संबंधी दस्तावेज मांगेगी

0: लेकिन 10 वाहन के चालक मन को तीले दस्तावेज नहीं दिखाएगीस, जेखर बाद टीम हा पंचनामा तैयार करके आगू के कार्रवाई करिस। उती बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के अगुवाई में खनिज विभाग और पुलिस के टीम हा मिंगाचल नदिया में पाछू देर रतिया छापा मार के रेत उत्खनन करत जेसीबी पोकलेन मशीन और 4 ठीन वाहन ला पकड़िस। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के आए के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ ले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होवा तमिलनाडु तक एक ठीन द्रोणिका बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। कांग्रेस राज्य सरकार ले बिजली के दर में करेगे बढ़ोतरी ला तुरते वापस लेके और उपभोक्ता मन ला राहत दे के मांग करी से। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुंगेली में रखे गए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाईन के भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरलग 5वां घाव बिजली के दर में बढ़ोतरी करेगे है, जेखर से घरेलू व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ता मनु पर अतिरिक्त आर्थिक बोझा पढ़ी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रदेश में सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एक तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर मानसून के आय की संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:25 हो रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
4: बेबी को बेस पसंद है।
5: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
4: बेबी को बेस पसंद है।
6: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
7: पीएम किसान।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, मेरे यार की शादी है फिल्म से। आवाज़ है अलका याग्निक एवं उदित नारायण एवं सोनू निगम की। संगीत निर्देशन है जीत गांगुली का और गीतकार हैं जावेद अख्तर। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम सौंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार एवं हेयांश कुमार चंदन। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी एवं गणेश कामले। कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी एवं दीक्षांत मिरी। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम अब्दुल सलाम। उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना बेगम एवं फरदीन खान। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीव धन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा एवं ऐश्वर्या पैकरा। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति एवं कुमार डिकेश। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली एवं सुरेश नारंग। नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे एवं पुष्पा नारे। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी एवं प्रियांशी। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं पद्मावत फिल्म का ये गीत। आवाज है शिवम पाठक की, संगीत निर्देशन है संजय लीला भंसाली का और गीतकार हैं एम तुराज। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता आजाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही एवं महराज जहां, रजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि एवं सानवी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान एवं अबान अब्बासी, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव, जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर और खंडवा से संदीप कौर एवं दुर्गा कौर, जिला मुरादाबाद

ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार एवं नरगिस। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश एवं परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा एवं बिमला अनेजा। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा एवं इंदिरा शर्मा। तिलक नगर नई दिल्ली से आरएस स्वीटी एवं आरके शुक्ला। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। सुल्तान फिल्म से आवाज़ राहत फ़तेह अली खां की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं इरशाद कामिल। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कुरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता साहू। सांकरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवती देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू। ग्राम लसूडिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका एवं रमेश चंद्र दांगी। संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति एवं ओजस्वी यादव। फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फतिमा, नासरीन, आलिया एवं सबा अंसारी।

गुप्ता, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा, जालंधर से देवशंकर जटौलिया एवं भरत जटौलिया, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया एवं आयान, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र एवं रौनक सेन, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमिन एवं पथिक डोम, डोंडी लोहारा से प्रभा जमौरिया, अनुश्री, पूजा एवं डॉली, मुंबई से किशोर हिवराले एवं सुजाता हिवराले, आरआर नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश एवं दीपेश वर्मा, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी एवं मोहम्मद कैफ अंसारी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का एवं तन्मय गजभिये, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान एवं उत्कर्ष चौहान। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कर्क शमीमिल की गूंज में अगला गीत शामिल किया है रोजा फिल्म से। आवाज़ है एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की। संगीत निर्देशन है एआर रहमान का और गीतकार हैं पीके मिश्रा। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा एवं रिमझिम।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं साथिया फिल्म का ये गीत। साधना सरगम, मुर्तजा खान एवं कादिर खान की आवाज़ है। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं गुलजार। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम मनोजनगर जिला सूरज।

जाजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता धिया, काव्या एवं मंजू राजवाड़े, मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी एवं गेंदू भाई, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास एवं रानी मानिकपुरी, बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, जालंधर से संदीप कौर एवं प्रभा कौर, मेरठ बाईपास से राधिका कौर एवं आरती कौर, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू, उमाराज, दिव्या भारती एवं गौराया, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावरकर, निर्मला एवं विशाल नावरकर, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज एवं ऋषभ मरावी। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

साधना सरगम, मुर्तजा खान और कादिर खान की आवाज़ में साथिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम ईमेल की गूंज बस यहीं तक। मेल के ज़रिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ मुझे यानी आपकी रेडियो साथी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान।

कार्यक्रम रात प्रधान में हमने पहला गीत शामिल किया है झूम बराबर झूम फिल्म से। आवाज़ है राहत फतेह अली खां एवं महालक्ष्मी अय्यर की। संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और गीतकार हैं गुलजार। ये गीत राग भीम पलासी पर आधारित है। ये राग काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग में कोमल गांधार और निषाद का प्रयोग होता है। आरोह में रे और घ स्वर वर्जित हैं। इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर सड़ज है। इस राग का गायन समय दिन का अंतिम पहर है।

कार्यक्रम राग प्रधान में अब आइए सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति एवं शंकर महादेवन की। संगीत निर्देशन है स्माइल दरबार का और गीतकार हैं महबूब। ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित है। ये भैरव थाट का प्रातःकालीन राग है। इसमें भैरव और काफी का मिश्रण है। इसके पूर्वांग में भैरव तथा उत्तरांग में काफी है। इसमें ऋषभ और निषाद स्वर कोमल लगते हैं और ये एक संपूर्ण जाति का राग है। ये राग काफी शांत भावपूर्ण और आध्यात्मिक माना जाता है। ये सुबह के समय गाने के लिए उपयुक्त होता है।

कार्यक्रम राग प्रधान में अब आइए सुनते हैं गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म का ये गीत। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है संजय लीला भंसाली का। ये गीत राग विहाग पर आधारित है। राग विहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर राग है। यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस, शांति और मधुरता से परिपूर्ण है। इसे विशेषकर रात्रि के दूसरे पहर में गाया और बजाया जाता है। इसकी जाति औरव संपूर्ण है तथा दोनों माध्यमों का प्रयोग इस राग की मधुरता को बढ़ाते हैं।

कार्यक्रम राग प्रधान में अब आइए सुनते हैं पहली फिल्म का ये गीत। आवाज़ है हरिहरन एवं बेला शिंदे की। संगीत निर्देशन है MM करीम का और गीतकार हैं गुलजार। इस गीत में राग शिवरंजनी का प्रयोग हुआ है।

खास बात यह है कि इसमें मध्यम म और निषाद नी स्वर वर्जित होते हैं। ये राग सुनने में बेहद शांत होता है, जो किसी के वियोग या यादों के दर्द को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त करता है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। इस गीत में राग तोड़ी का प्रयोग हुआ है। इसे मुख्य रूप से राग के कोमल स्वरों और उसकी भावपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये थोड़ी ताट का ही मुख्य आश्रय राग है। रे ग ध शब्द कोमल होते हैं और म तीव्र प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गांधार है। ये राग मुख्य रूप से दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। ये बहुत ही शांत, गंभीर और करुण रस से भरा हुआ राग है। इसे शास्त्रीय संगीतों में रागों का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक भावनात्मक गहराई होती है।

राग शिवरंजनी पर आधारित ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पहेली से। ये राग औड़व जाति का राग है, जिसका मतलब है कि इसमें आरोह और अवरोह दोनों में केवल 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें सा, रे, ग, प और ध का उपयोग किया जाता है।

फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज़ में हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम राग प्रधान यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि की 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन में आप सभी श्रोता साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत चुपके चुपके फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है SD वर्मन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, रियांश, गुड़िया एवं परिवार के सभी सदस्य, वसुंधरा विहार गोधनपुर से जयेश प्रसाद शुक्ल और परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य, फुटानी चौक नारहन स्टेट से फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या एवं ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नारहन बाजार से BK मिश्रा, लल्लू पंडित एवं विनय सुर गनेया। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन में अब लीजिए सुनिए अनुरोध फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनस खत्री, शफी, इंद्रिस, नूर मोहम्मद, कासिफ हासिम, इरफान, मीना एवं परिवार के सभी सदस्य, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबिता, निखिल, अंकित, मोनी एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से ही राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, पप्पू, हेमलता, पूजा, सीता, प्रभा, सविता, सागर, आयुषी एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम मुथली पोस्ट थाना चांदनी बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण, गोलू, दीपू, ललित, सतीश, संदीप, प्रदीप, रामसेवक, श्याम, कार्तिक, सुरेश, अरविंद, रेणु, चंदा, रीना, हीना एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का और गीतकार हैं गुलजार। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कटघुरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास दीवान, शीला, ओम प्रकाश, रूपमणि, जयप्रकाश, सिद्धांत, शौर्य एवं परिवार के सभी सदस्य। जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला एवं गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा एवं नीतू वैद। रेलवे कॉलोनी बटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन में अब आइए सुनते हैं पराया धन फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैभव कान्हा एवं शिवम वैष्णव, सोनाडी से सुब्रत चौधरी एवं अनीशा, भाटापारा से मोतीलाल यादव, बसंत ब्रिगू एवं विनय ठाकुर, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया जानवी, तृप्ति।

एवं परिवार के सभी सदस्य, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, अंजलि एवं परिवार के सभी सदस्य, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से अनीता मोचवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज एवं परिवार के सभी सदस्य, गांधीबाग नागपुर से अशोक मीनाक्षी सावलानी, सारंग भावना, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर पराया धन फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए इजाजत फिल्म का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा एवं अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू एवं सीएल यादव, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश एवं श्रीमती शीतल राजेश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा एवं झावेंद्र कुमार वर्मा।

छत्तीसगढ़ रिंगनी से दिनेश वर्मा एवं करुणा वर्मा, सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता जैन, प्रदीप, मोनिका, शिवानी एवं माया यादव, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही एवं महराज जहां, कोरबा छत्तीसगढ़ से सम्मेलाल कुर्रे एवं सावित्री देवी कुर्रे, शारदा विहार अमली डी रायपुर से प्रभा देवांगन, मोहनलाल एवं भाग्यश्री। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में इजाज़त फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम मन भावन बस यहीं तक। अब मुझे यानी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त।

0: मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि

0: प्रसारित किया जा रहा था। ये वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।
1: इसमें भाग ले रहे हैं 11:00

0: प्रसारित किया जा रहा था। ये वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।
1: इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ
0: 10 मिनट हो रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।